FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 9, तदनुसार 31 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त

0: शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही है। महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and new Union Territory Administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said, this issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, for the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk. He said, keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and the centre. The Prime Minister said Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions.
2: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले.
1: The Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it yesterday. Rajya Sabha had passed the bill on Wednesday. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill to further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now begun targeting women protesters demanding basic rights. Pakistani security forces opened fire on women demonstrators gathered in large numbers in Rawalkot and Mirpur, where they were raising slogans against the crackdown. Several videos circulating on social media purportedly show women fleeing as police opened fire during a peaceful protest rally in Kotli. In Pakistan, at least 18 miners were killed and 24 others trapped underground after an explosion inside a coal mine in Balochistan province yesterday. The blast was apparently triggered by a build-up of methane gas and occurred on the outskirts of Quetta. According to the officials, the bodies of 7 miners initially were recovered hours after the deadly blast, and emergency responders later found 11 more bodies. Government mine inspector Ghani Baloch said that rescue operations would continue until all the trapped miners were found. In Kerala, an orange alert indicating isolated very heavy rain has been declared in 11 of the 14 districts today. Remaining 3 districts are under yellow alert, predicting isolated heavy rain. Heavy rain is expected in the state tomorrow also. In Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovepreet Singh won a silver medal in the men's 110kg category, while Seema Kali Ramana bagged a bronze medal in women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. In Under-17 World Championships, Indian wrestler Nikita Sheherawat settled for a silver medal, while Kamna Babal and Garima bagged bronze medals in the women's event in Baku, Azerbaijan, yesterday. And that is the end of this news bulletin.
3: FMK 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है. प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान. गायक कलाकार हैं रंजना जोगलेकर.

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थी रंजना जोगलेकर। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं नरेंद्र चंचल एवं साथियों के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे सुभाषिष मित्रा। सुबह 7 बजे समय होगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। माटी की महक लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कुरमाली लोकगीत। कलाकार होंगे लालू महतो एवं साथी।

9 बजे विविध कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम पुनः प्रसारित किए जाएंगे दोपहर 1:20 पर। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3 बजे से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4 बजे मुख्य समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 5:02 पर हमारे चयबासा केंद्र से प्रसारित शेष कार्यक्रमों की विवरण दी जाएगी। शाम 5:05 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एक ही गीतकार के लिखे चंद फिल्मी गीत।

शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। 6:30 पर नन्ही दुनिया कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 7 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8 आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात के 8:15 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा। रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल का रिकॉर्डिंग का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं सुभाषिस मित्रा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे सुभाषिश मित्रा। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।

उपहार फिल्म के इस गाने के बाद श्रोताओं सुनते हैं विश्वास फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की।

0: आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना।

0: ଲାଗି ଆମେ ବୋଲେ ଗୁଡ଼ାତବନ ମେଁ ହେଲେ ପରିବାର ସେ ମତଲବ ପୁରା ଇଏ ହେଲା।
1: ମୋର ନାମ ମଙ୍ଗଳ ରାୟ କ ଗାଁ ବାରିଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଥାନା ତ ଜଙ୍ଗଲ ଯା ହେତ ଆଉ କା କାହା ମାନେ ଆହେ ବୋଲେ ଆଉ କା ଉ ଜିନ୍ଦା ହେନ ମାନେ ଜିନ୍ଦା ହେ କୋଇ କୋଇ ନାମରେ ଶୁଣି ପାରିଲି ଭାଇ ଚାଲତେ ଏକଦମ ଆମରେ ପୁରା ଏକଦମ ଏଖନ ତ ତମେ ଠିକ ହୁଏ ହେଇ ନାଇଁ ତ ପୁରା ଏକଦମ ପରିବ
2: ନାମ ହେ ରଣବାଲା ଦେବୀ ଗାଁ ବାର ହତ କଥା ତ ଘର ଆଇନି ଆମରେ ଘରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କେ ବାତ ହେ ତ ଏଖନ ବାତ ହେ ଯା ହେ
3: ତୁମ ବରାମ ସିଂ ତାମସାଏ ଅନିତା ତାମସାଏ ଭୁରୁପା ସେନା କନା ଏସବୁ ଦୁଃଖରେ ମିନା ଆଜ୍ଞା ଯାପା ମେରେ ତପା ମେରେ ଓଆ ବିଟା ନିକା
4: ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱩᱢᱵᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱯᱟᱴᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱭᱟ ᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱚᱢᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱩᱲᱚ ᱯᱟᱴᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱠᱤᱛᱢᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱩᱱᱤᱢᱮ ᱩᱲᱤ ᱩᱲᱤᱱᱮ ᱵᱟᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱫ ᱠᱤᱧ ᱱᱩᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱢ ᱜᱚᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱟᱭᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱜᱩ ᱦᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱢᱤᱭᱟ
5: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞ ᱛᱮ ᱱᱟᱞᱤᱧ ᱥᱮ ᱟᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱮᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞ ᱛᱮ ᱱᱟᱞᱤᱧ
6: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: जोहार चैबसा कार्यक्रम में श्रोता हूँ। आइए अब सुनते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मन्ना डे की।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वीरू दादा फिल्म का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले के स्वरों में।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राम लखन फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलेशा चेन्नोय, मोहम्मद अजीज और अमित कुमार की।
1: लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो, अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है

रामलखन फिल्म के इस गाने के साथ ही जोहार चैबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चैबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला यह विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
3: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
2: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
6: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
2: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस

0: पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
1: The reality of life is that everything has a beginning.
2: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी। अमर उजाला की ये सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव। अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कलीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning. I'm Anuja Kumar. The headlines. Parliament passes Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill with stricter punishment for paper leaks. Prime Minister Narendra Modi welcomes passage of the bill, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announced Maritime Defense Alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. U.S. President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovepreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kali Ramana bags bronze medal in discus throw. And now the news in detail. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and Union Territory Administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
5: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
4: Initiating the discussion, leader of the opposition Mallikarjun Kharge said that proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations.
6: Increasing fines, imposing stricter punishments and introducing provisions such as special task forces and fast-track courts will not solve the problem. The real difference will depend on how you conduct the examinations and how effectively you ensure that they are held without any paper leaks.
4: Leaders of the BJP, Congress, JDU, Samajwadi Party, TMC, DMK, AIADMK, NCP, AAP, BJD, RJD, CPIM and others also participated in the discussion on the bill. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, "Keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the center." The Prime Minister said Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions.
7: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले.
4: The nation pays homage to revolutionary freedom fighter Shahid Udham Singh on his 87th martyrdom day today. Belonging to Gadar Party and Hindustan Socialist Republic Association, Udham Singh assassinated Michael O'Dwyer, former Lieutenant Governor of British Punjab, on the 13th of March 1940 to take revenge of the 1919 Jallianwala Bagh massacre of Amritsar.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद से लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। पेपर लीक और गड़बड़ी पर 10 वर्ष तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 26 बंदियों की रिहाई पर बनी सहमति। सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के निर्देश। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी ने एक अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। विपक्ष ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सत्ता पक्ष ने कहा सरकार कर रही है कड़ी कार्रवाई। झारखंड में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग ने रांची समेत 18 जिलों के लिए आज बारिश, गरज चमक और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। रांची पदक तालिका में शीर्ष पर। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 79 बंदियों के मामले की समीक्षा की गई। विस्तृत विचार विमर्श के बाद 26 कैदियों के रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिहा होने वाले बंदियों के पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापन और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों ने नक्सलवाद, मादक पदार्थों और पशु तस्करी सहित अंतर्राज्यीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर सहमति जताई है। सिंहभूम प्रक्षेत्र के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में हुई बैठक में खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान, बेहतर समन्वय और संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में सीआईडी ने एक अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच राज्य की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
1: किस प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, एक जगह दो जगह नहीं बल्कि बिहार के पटना में भी उन लोगों को रटवाया गया, यहाँ तक कि देश से बाहर नेपाल में भी, रांची में भी कई स्थानों पर होटल लेकर के क्वेश्चन को रटवाया गया। ये जब सीआईडी ने जांच किया था पूर्व में, ये सारे तथ्य सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है।
0: वहीं इस मामले में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: निवेदन करेंगे हम, छात्रों से अपील करेंगे कि वो जांच एजेंसियों को सहयोग करें। अगर कोई जानकारी आपके पास है जेपीएससी से संबंधित तो आप जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएं ताकि जांच और बेहतर ढंग से चल सके। और एक अपील करना चाहेंगे कि छात्र राजनीति का हिस्सा न बने।
0: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 की आवेदन प्रक्रिया के लिए नई समय सारणी जारी की है। अब ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से 4 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने और दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर होगी, जबकि त्रुटि सुधार के लिए 6 से 8 सितंबर तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

0: ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने झारखंड दौरे के दौरान 209 कोबरा बटालियन के जवानों के साथ पारंपरिक बड़ा खाना कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कुख्यात माओवादी मिसर बेसरा की गिरफ्तारी में शामिल बहादुर जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया। महानिदेशक ने इस सफलता का श्रेय 209 कोबरा और झारखंड पुलिस के बेहतर समन्वय तथा संयुक्त अभियान को दिया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने कहा है कि जिले में शीर्ष माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि इससे सुरक्षा बलों की चुनौती कम होगी और अब दूर दराज इलाकों तक जन कल्याणकारी योजनाएं तथा विकास कार्य तेजी से पहुंच सकेंगे।
1: नॉर्मली जितने तेजी से पहुंचने चाहिए योजनाओं का लाभ जो मिलना चाहिए इन सब क्षेत्रों में वो नहीं हो पाता था। नक्सलिज्म की समस्या समाप्त होने के बाद इनमें थोड़ी सी तेजी आएगी। इन जगहों पे डेवलपमेंट जैसे कि रोड्स बनना या इन क्षेत्रों में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो डेवलप होना।
0: हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े कोयलांचल शांति सेना कुबेर गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी अमन कुमार ने कहा कि इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 23 कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
2: 29/7 को हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ कि लोसिंगना थाना क्षेत्र में कुछ लड़के हैं प्रिंस खान के, जो उससे लगातार संपर्क में है। टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोग जो हैं वो बोकारो के हैं और 3 लोग जो हैं हजारीबाग के हैं। पूरे क्रम में एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 3 गोली .303 का 20 गोली, 5 मोबाइल बरामद किया गया है।
0: मुंबई के वर्ली थाना क्षेत्र में 2,65,00,000 रुपए की चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लाखों रुपए के सोने के आभूषण, चोरी के अन्य सामान और एक एसयूवी बरामद की है। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला की विधिवत शुरुआत हो गई है। आज सुबह 4:02 पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पट खुलने के साथ ही जलाभिषेक शुरू हुआ। लगभग 75,000 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल और चिकित्सा की व्यापक व्यवस्था की है। मौसम। झारखंड में आज मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची, देवघर और साहिबगंज समेत 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसनसोल में आयोजित 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे दिन अश्विनी सुमन, तमन्ना झा, विवेक राज और अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीते। रांची पदक तालिका में शीर्ष पर है। अब तक 100 शूटर जोनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता मामले में सीआईडी की चल रही कार्रवाई को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, आज जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से तीसरी बार होगी पूछताछ। प्रभात खबर की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा हर राज्य पेपर लीक से परेशान, शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर रोक से किया इनकार। और दैनिक जागरण लिखता है, रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी 10 कंपनियों पर आयकर का छापा। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद से लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। पेपर लीक और गड़बड़ पर 10 वर्ष तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 26 बंदियों की रिहाई पर बनी सहमति। सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के निर्देश। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी ने एक अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। विपक्ष ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सत्ता पक्ष ने कहा, सरकार कर रही है कड़ी कार्रवाई। झारखंड में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग ने रांची समेत 18 जिलों के लिए आज बारिश, गरज चमक और वज्रपात का

जारी किया येलो अलर्ट। और 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन, रांची पदक तालिका में शीर्ष पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं रीना महतो एवं साथी।

अभी आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत। गायक कलाकार थी रीना महतो एवं साथी। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में हम हर रोज कुछ नई रोचक जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जानेंगे कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार थे। उनका वास्तविक नाम धनपद राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की समस्याओं, गरीबी, शोषण, किसान जीवन और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल तथा माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में ही माता पिता के निधन के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और अध्ययन के प्रति विशेष रुचि बनाए रखी। श्रोताओं, प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय नाम से की थी। बाद में वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उन्होंने लगभग 300 कहानियां, अनेक उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे थे। उनकी रचनाओं में समाज के आम लोगों की पीड़ा और संघर्ष का यथार्थ चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी और पंच परमेश्वर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रोताओं, प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज सुधार का माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। इसी कारण उन्हें यथार्थवादी साहित्य का अग्रदूत माना जाता है। श्रोताओं, 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया। उनका जीवन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और समाज को नई सोच प्रदान करती हैं। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम और भी जानकारी लेंगे इस वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं डॉक्टर शशिलता।
1: आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सबों को दो शब्द कहना चाहूंगी। जीवन का व्यापक चित्रण, अनेक सामाजिक समस्याओं का यथार्थ अनुभूतिपूर्ण प्रकाशन, स्वाभाविक, विश्वसनीय एवं मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण कथानक, भिन्न भिन्न वर्गों और पेशों के अनेक पात्रों का यथार्थ चरित्र चित्रण, पात्रानुरूप एवं स्वाभाविक सजीव संवाद, युग धर्म की सजीवता, सुंदर, सरल, परिष्कृत और प्रभावात्मक भाषा शैली, जीवन की स्वस्थ प्रेरणाओं और आदर्शों का महान उद्देश्य आदि गुणों की अवतारणा, हिंदी उपन्यास में सर्वप्रथम प्रेमचंद की लेखनी द्वारा ही प्रस्तुत हुई। मानवता का इतना दुख दर्द और दलित, दुखित, शोषित, निम्न वर्ग के प्रति इतनी सच्ची सहानुभूति लेकर आने वाला शायद ही दूसरा कलाकार रहा हो। भारतीय जीवन के 50 से भी अधिक वर्षों का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संघर्ष और विकास जितनी सत्यता से प्रेमचंद के उपन्यासों में पाया जाता है, वैसा इतिहास की पुस्तकों में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। निश्चय ही प्रेमचंद का आगमन हिंदी साहित्य के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ। प्रेमचंद हमारे सांस्कृतिक गुरु थे। नव भारत के निर्माण में उनका योग किसी राजनीतिक नेता से कम नहीं है। जो कार्य राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी ने किया, वही कार्य साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने किया है। अपने व्यक्तिगत जीवन और युग जीवन से बहुत कुछ पाकर उन्होंने सब कुछ अपने युग और भावी युग को दिया, अपने निज के लिए कुछ भी नहीं रखा। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य 23 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का अस्पष्ट चित्रण है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद के साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के समीप लम्ही गांव में हुआ था। माता आनंदी देवी, पिता अजायब राय थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। 7 वर्ष में माता को खो दिया और 14 वर्ष में पिता ने भी साथ छोड़ दिया। 15 वर्ष में इनका विवाह हुआ, किंतु शीघ्र ही पत्नी से संबंध विच्छेद भी हुआ। इनका दूसरा विवाह 1906 में शिवानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। तदुपरांत बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, परंतु 2 वर्षों के बाद ही गांधी जी के आह्वान पर पद से त्याग पत्र देकर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अब इन्होंने लेखन को ही अपना व्यवसाय बना लिया। प्रेमचंद माधुरी, मर्यादा आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। इसी समय इन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा और हंस तथा जागरण पत्रिका निकाली। कुछ वर्षों तक बम्बई की सिनेटोन कंपनी के कहानी लेखक के रूप में भी कार्यरत रहे। प्रेमचंद की साहित्य साधना 1901 से उर्दू से आरंभ होती है। इन्होंने अपने किशोर काल में ही उर्दू में प्राप्य सभी उपन्यासों और किस्से कहानियां पढ़ डाली थीं। नजीर अहमद, रतननाथ शरशार, मौलवी अब्दुल हकीम, मिर्जा रुसवा आदि की रचनाओं का गहरा प्रभाव इन पर पड़ा। इनका पहला उर्दू उपन्यास अशरारे मआविद है। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था और भविष्य में रचना न करने की हिदायत दी थी। फलस्वरूप इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना आरंभ किया। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। इनकी प्रतिभा का प्रखर प्रस्फुटन कथा क्षेत्र में अत्यधिक हुआ है। उपन्यासकार के रूप में इनमें अतिशय ख्याति प्राप्त हुई। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अद्भुत लेखन क्षमता और सजीव चित्रण इनकी विशेषता है। इनकी कलम में जादू है

कलम के जादूगर हैं प्रेमचंद। इनके उपन्यासों की विशेषताओं पर दृष्टिपात करें तो अनेक खूबियां हमें दृष्टिगोचर होंगी। 1918 में प्रकाशित सेवा सदन उपन्यास वेश्या जीवन पर आधारित यथार्थ मिश्रित आदर्शवादी उपन्यास है। नायिका सुमन के जीवन के विविध पक्षों का चित्रण इस उपन्यास में है। नायक प्रेम शंकर के माध्यम से ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को तथा किसान आंदोलन के परिवेश को उभारा गया है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक्ट की समस्या, किसान आंदोलन, सामंती व्यवस्था आदि की सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण है। नायक प्रेम शंकर जमींदार होकर भी स्वेच्छा से सब कुछ त्याग कर देता है और स्वराज आंदोलन में सक्रिय हो जाता है तथा प्रेमाश्रम की स्थापना करके किसानों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद का प्रेमाश्रम उपन्यास गांधी जी के राजनीतिक प्रयत्नों का साहित्यिक रूपांतर है। 1925 में रचित रंगभूमि उपन्यास औद्योगिक सभ्यता तथा सत्याग्रह आंदोलन की विचारधारा को लेकर लिखा गया उपन्यास है। नायक अंधा सूरदास है, जो गांधी जी का लघु संस्करण है। नायक सूरदास सच्चा सत्याग्रही है। सूरदास को उपन्यास का नायक बनाकर प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य में एक क्रांतिकारी बदलाव आरंभ किया। 1925 में लिखित निर्मला उपन्यास अनमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित करने वाला निर्मला और मुंशी तोताराम के वैवाहिक जीवन को चित्रित करने वाला उपन्यास है। 1926 में प्रकाशित कायाकल्प उपन्यास में गांधी जी की आध्यात्मिक नैतिक विचारधारा का प्रस्फुटन हुआ है। उपन्यास का मुख्य पात्र चक्रधर है, जो गोहत्या का विरोधी है। उपन्यास में भोग बनाम संयम, पुनर्जन्म व कर्मवाद तथा हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत संग्रथन हुआ है। प्रतिज्ञा उपन्यास 1927 की रचना है, जिसमें विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं का अंकन किया गया है। अमृत राय आदर्श पात्र के रूप में चित्रित हुए हैं। गबन 1928 की रचना है, जिसमें नायक रमानाथ तथा उनकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व आदि ताने बाने हैं। उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु नारी की आभूषण प्रियता है। कर्मभूमि 1932 की रचना है, जिसकी मूल समस्या स्वाधीनता की समस्या है। अछूतों और किसानों की समस्याएं इसी समस्या का अंग बनकर उभरी हैं। इसकी पृष्ठभूमि में सविनय अवज्ञा आंदोलन और लगान बंदी आंदोलन की गहरी छाप है। अमरकांत और सुखदा इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। 1936 में लिखा गया प्रेमचंद का एक बड़ा महत्वपूर्ण और अंतिम उपन्यास गोदान है। गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जो कृषक जीवन की समस्याओं पर आधारित है। गोदान सामाजिक समस्या प्रधान उपन्यास है, जिसमें विकास के को प्रमुखता दी गई है तथा नगर और ग्राम्य जीवन को सन्निकट लाकर गाँव के विकास का स्वप्न संजोया गया है। समाज की विभिन्न और विविध समस्याओं को आत्मसात किए हुए युग प्रवर्तक महाकाव्य के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ के नाम से प्रकाशित हुआ। उपन्यास का मुख्य पात्र होरी है, जो कृषक जीवन का एक मुख्य प्रतिनिधि है। प्रेमचंद का अगला उपन्यास मंगलसूत्र, जो अधूरा ही रह गया, उनके पुत्र अमृत राय ने

0: 1948 में इसे पूरा किया था। प्रेमचंद ने उपन्यासों के अतिरिक्त 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं, जिनका संग्रह मानसरोवर के 8 खंडों में उपलब्ध है। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्य वर्ग का चित्रण है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, कफन, मुक्तिदाता, पूस की रात, बड़े भाई साहब, समर यात्रा, सौत, मुक्तिधन, मंत्र, कप्तान साहब, ईदगाह, नरक का मार्ग, उपदेश, परीक्षा, रानी सारंधा, राजा हरदौल, मर्यादा की बेटी आदि चर्चित कहानियां हैं। प्रेमचंद स्वभाव से सरल आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे सभी का विश्वास करते थे, किंतु निरंतर उन्हें धोखा मिलता रहा। उन्होंने अनेक लोगों को धनराशि कर्ज दी थी, किंतु बहुधा यह धन लौटा ही नहीं। प्रेमचंद का सबसे प्रधान गुण है उनकी सहानुभूति। उनके व्यक्तित्व का मानव पक्ष अत्यंत विकसित था। प्रेमचंद की सहानुभूति इतनी व्यापक थी, उनका हृदय इतना विशाल था कि जीवन के सभी रूपों के प्रति उसमें राग था। उनकी प्रतिभा कई अंशों में महाकाव्यकार की प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें जीवन की समग्रता के प्रति राग था और मानव के सभी रूपों के प्रति ममत्व था। विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद में मिलते हैं, उतने किसी और उपन्यासकार की रचनाओं में नहीं मिलते। निसंदेह उनके जीवन दर्शन का मूल तत्व मानववाद है। इस मानववाद का धरातल सर्वथा भौतिक है। प्रेमचंद ने युग जीवन का व्यावहारिक दृष्टि से, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किया और उसी दृष्टि से समाधान भी खोज की, इसलिए उनको मानवतावाद का व्यावहारिक रूप जनवाद ही स्वीकार्य हुआ। प्रेमचंद के साहित्य में जनवादी विचारधारा है, जनवादी बोध है। इस प्रकार प्रेमचंद हिंदी साहित्य के हिंदी एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं और सदियों तक इनका प्रकाश आलोकित करता रहेगा, साहित्य जगत को प्राणवान और ऊर्जावान बनाता रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के जीवनी पर आधारित ये वार्ता। वार्ताकार थी डॉक्टर शशिलता। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए है
6: ये तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थाम सोए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आये यापा में रियो तपा में रियो वाह बेटा मिका
7: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे दुरुगम गया तब जय तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया अलिंग मुनिसुरें पैते आपीले तना
8: लिंग से जा हुरा रे मिनाइ रो जिता हुरा रे मिनाइ रो तो बुगिन हुराते ससन का है वो आगे बिटा उरेन का आले आया नु तुम कई नाम अपील लेता।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने।

0: का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

इस गीत के साथ ही विविधा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चयबसा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं 9:30 हो रहे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

रसरंजन कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है साजन की बाहों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तुम सा नहीं देखा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: रसरंजन कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सलमा पे दिल आ गया फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और कुमार शानू के युगल स्वर में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रसरंजन कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राम जाने फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक की।

रामजाने फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। दिन के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
2: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
2: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
2: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
2: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
3: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
2: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
3: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
6: प्रणाम गुरुदेव।
7: प्रणाम प्रणाम।

0: आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
1: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
0: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
1: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
0: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
1: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, अरे मिनट कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें

0: निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, 10:33 होने को है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सुनने वाले सभी दोस्तों को रेणु
1: और उषा का प्यार भरा नमस्कार
0: जोहार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। तो आज का सुविचार प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के विचारों से
1: जो कभी एकांत में बैठकर किसी के स्मृति में किसी के वियोग में सिसक सिसक कर और बिलख बिलख नहीं रोया वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हस्तियां निक्षावर हैं।
0: उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है।

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
3: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
4: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
3: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मी का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: विराम के बाद फिर से हम हाजिर हैं अपने जोहार रांची कार्यक्रम में। और रेणु जी, मुझे लगता है कि इतना मौसम जो भीगा भीगा है, इसे देखकर तो पहले हम मौसम की ही बात कर ले तो अच्छा होगा।
6: हाँ उषा जी, देखिए ना, मौसम की झिमझिम बारिश, रिमझिम रिमझिम बौछारे और ये सावन का महीना गजब की घटा मतलब छाई हुई है। चारों ओर हरियाली।
5: हाँ, चारों ओर हरियाली है और साथ ही साथ भक्तिमय रूप भी बाहर में देखने को मिल रहा है ना, कि बम भोले और शिव जी की महिमा का गुणगान। हाँ, जगह मंदिरों में लाइन और जहाँ जहाँ धाम है शिव के वहाँ पर काफी भीड़, यानी कि सावन आया और हम लोग सीधे अपने भक्तिमय रूप में ही चले जाते हैं।
6: और तो और सब महिलाओं के हाथों में देखेंगे भी हरी हरी चूड़ियाँ,
5: हरे हरे कपड़े,
6: हरे रंग के कपड़े।
5: देखिए वो हम पहनते हैं ना, लेकिन प्रकृति ने इससे पहले चारों ओर हरियाली की चादर बिछा दी है ना, और जब उन्हें देखते हैं तो हमारा भी मन हरा हो जाता है। और मोर जब नाचने लगते हैं तो वो भी अपने हरे पंख फैलाते हैं और चारों ओर हरियाली जब फैलती है ना, तो बस एक प्यारा सा गीत आप सुनवा दे तो ये हरियाली का मजा दोगुना हो जाएगा
6: सच में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
6: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
7: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले।
5: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
6: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
7: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी

0: मेला, मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: उषा जी,
3: अब विराम के बाद में फिर से हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे के कार्यक्रम में और पन्ने पलटते हैं इतिहास के। तो चलिए आज के दिन यानी 31 जुलाई को क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी देते हैं। 1940 ईस्वी में भारतीय क्रांतिकारी सरदार उद्धम सिंह को लंदन की पेंटन विलेज जेल में फांसी दी गई थी, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था।
2: हाँ।
3: और 1950 में आज के दिन भारत और नेपाल के बीच शांति और मैत्री का हस्ताक्षर किया गया था।
2: और आज के दिन देश के स्वतंत्रता संग्राम में खास महत्व है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया और यहाँ जीवन के कुछ नए प्रयोग किए, जैसे खेती, पशुपालन और खादी। इसी आश्रम से महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम का ताना बाना बुनना शुरू किया। गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कई जन आंदोलन का नेतृत्व किया।
3: और साबरमती आश्रम से ही सत्याग्रह और दांडी मार्च जैसे आंदोलनों का साक्षी रहा है ये। हालांकि 31 जुलाई 1933 को गांधी जी ने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन उनकी यादों को आज भी इस आश्रम में सहेज कर रखा गया है और हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं।

0: रेणु जी, आज के दिन कौन कौन से दिवस भी मनाए जा रहे हैं इसके बारे में भी हम अपने श्रोताओं को बता दें। आज का दिन दुनिया भर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले जो या फिर घायल होने वाले वन रेंजरों को श्रद्धांजलि देने और प्रकृति संरक्षण में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ, और मुंशी प्रेमचंद का जन्म आज के दिन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वो हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। कफन, पूस की रात
0: और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। और पता है रेणु जी, इन इन बहुत सारी कहानियों में फिल्म भी बने हैं।
1: हाँ,
0: है ना।
1: हाँ,
0: और हमने फिल्म भी देखी। और बस इनकी कहानी में एक बात होती थी कि वो समाज की जो बातें होती थी उसका आईना था इनका। इनकी जो किताबें थी, इनकी जो उपन्यास थे वो, और बहुत ही दिल को छूने वाली बातें होती थी। और ऐसा लगता था ना जब उन्हें पढ़ते थे, मैंने भी गोदान पढ़ा है और कर्मभूमि पढ़ी है, तो उसमें ऐसा लगता था कि सब कुछ अपने आंख के सामने बीत रहा है, बस जो कुछ गुजरा है वो इन्होंने लिख दिया। और हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में लेखक दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। ये दिन देश और दुनिया के उन सभी रचनाकारों को समर्पित है जो अपनी लेखनी से समाज को जागरूक करते हैं।
1: और 1902 में के शंकर पिल्लई का जन्म हुआ, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है। वे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। 1907 ईस्वी में दामोदर धर्मानंद कोशामी का जन्म हुआ, भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे।
0: और आज के दिन 1998 में श्रीजा अकुला का जन्म हुआ, जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी थी। और 1947 ईस्वी में मुमताज का जन्म हुआ। मुमताज हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1971 में खिलौना में अपने किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। उन्हें 60 और 70 के दशक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में के रूप में याद किया जाता है। और इनकी जो फिल्म है ना, वो बहुत ही मतलब दिल को छूती थी, बहुत ही आनंद आता था, क्योंकि वो चुलबुली, हंसमुख और
1: नटराज,
0: जिस जमाने में फिल्मी पर्दे पर उन्होंने अभिनय किया था, वो अपना बस जादू बिखेरती थी। इनकी फिल्में थी ना, 1969 में आई दो रास्ते, रोटी 1974 में,
1: लोफर आई थी 1973 में, और आपकी कसम 1974 में, ब्रह्मचारी 1968 में, और खिलौना 1970 में, और भी कई फिल्में हैं।
0: तो फिर मुझे लगता है ना कि इनके अभिनीत एक फिल्म का गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
1: जरूर।

0: रेणु जी, हम जब इतिहास की बातें कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि आज के दिन किनका निधन हुआ है। 1968 में श्रीपाद दामोदर सातलवेलेकर का निधन हुआ, जो 20वीं शताब्दी के भारतीय सांस्कृतिक उन्नयन में विशेष योगदान देने वाले विद्वान थे। 2021 में मान कौर का निधन हुआ, जो भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी, और 1941 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक आशुतोष दास का निधन हुआ था। शहीद उद्धम सिंह का शहादत दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है।
1: और बात करते हैं आज 31 जुलाई को मोहम्मद रफी, जिसे दुनिया रफी या रफी साहब के नाम से बुलाती है, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ पार्श्व गायकों में से एक, अपनी आवाज की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। आज के दिन वे दुनिया से अलविदा हुए, लेकिन आज भी दुनिया बड़ी शिद्दत से याद करती है। मोहम्मद रफी की आवाज ने अपने आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित किया है।
0: इनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण शामिल हैं। 1940 के दशक में आरंभ से 1980 तक इन्होंने कुल 5000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं में गीत शामिल हैं। नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा फिल्म अनमोल घड़ी से रफी साहब को पहली बार हिंदी जगत में इससे ख्याति मिली थी। और अब हम चाहते हैं कि रफी साहब की ही आवाज में एक और प्यारा सा गीत आप हमारे श्रोता को सुनाएं।
1: जरूर। और पता है उषा जी, उन्हें भारत में 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1967 में भारत सरकार ने उन्हें 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। 31 जुलाई 1980 को हम सबसे जुदा हो गए। करते हैं उन्हें सत सत नमन।

0: रेणु जी, जब हम अपने श्रोताओं से जानकारी जब साझा करते हैं ना, तो ये भी बताते हैं कि हमारे आसपास आजकल क्या हो रहा है, ताकि वो नगर में क्या हो रहा है उसके बारे में उन्हें भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो ये भी बता दें कि राजधानी की सांस्कृतिक फिजा में एक बार फिर सुर ताल और अभिनय की त्रिवेणी बहने वाली है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संस्था संगीत नाटक अकादमी और रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 1 और 2 अगस्त को, यानी कल और परसों, 2 दिवसीय कला संवाद एवं युवा कलोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और जो भी संस्कृति के और कला के प्रेमी हैं, वो यहाँ पर तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे। और इस सांस्कृतिक महाकुंभ में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के होनहार युवा कलाकार अपनी कला साधना से भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विविध रंगों को मंच में उकेरेंगे।
1: और भी उन्हें बता देते हैं ना उषा जी, कि उत्सव की शुरुआत 1 अगस्त को प्रातः 10 बजे से ये सेंट्रल लाइब्रेरी सभागार से होगी। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र में मानवता का स्वर विषय पर बौद्धिक मंथन भी होगा। और भी यह है कि ये कला प्रेमियों और युवाओं के लिए ये फ्री एंट्री है। एंट्री जो है
0: सबसे अच्छी बात।
1: हाँ, तो कथक, ओडिसी, झूमर, नृत्य सब होंगे। अगर आप क्लासिकल, म्यूजिकल, थिएटर, डांस और कला संस्कृति के प्रेमी हैं, तो यह वीकेंड आपके लिए बेहद खास है। 2 दिवसीय इस आयोजन के सभी कार्यक्रम में आम नागरिकों, विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। अकादमी की महासभा के सदस्य लोग ने ये आयोजन के सब गवाही बनेंगे। तो इसके लिए आपको भी जब भी समय मिले ये इसमें भाग लीजिए।
0: 2 दिनों में जरूर।
1: हाँ, 2 अगस्त की शाम 6 बजे से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य होगा, आर्यभट्ट सभागार में होंगे। तो आप सब इस पे सोच सकते हैं, और सोचेंगे कब, जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे क्योंकि मौसम जो है ऐसा चल रहा है ना मानसून का, कि कभी भी कोई बीमार पड़ रहा है, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो आम बात हो गई है।
0: क्योंकि बारिश के मौसम में अगर आप भीगते हैं तो ये सभी बीमारियां अपने आप उछल कूद के आपके पास चली आती है ना। तो बरसात के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला या साफ पानी पिए, बाहर का तला भुना खाना खाने से बचें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं, और इस दौरान संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचे रहें।

0: के लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
1: जैसे है, घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, और क्योंकि इससे मच्छर पैदा होते हैं, और सोने के समय मच्छरदानी का उपयोग करें और शरीर को ढकने वाले पूरे कपड़े पहने। मच्छरों को भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें, मतलब तो खासकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
0: विशेष ध्यान, और ये भी बता दें कि हमेशा उबला और अच्छी तरह से छना हुआ पानी ही पिए।
1: हाँ।
0: और बाहर में जो कटे हुए फल, जूस, खुले हुए चाट पकोड़े जो बनते हैं ना खोमचों में, उन्हें खाने से बचें, और ताजी गर्म जो भोजन है
1: हाँ।
0: उसको अपने भोजन में शामिल करें। और लेकिन एक सबसे जरूरी बात जो हमें कोरोना ने सिखलाई है कि भोजन करने से पहले अपने हाथ को
1: अच्छी
0: अच्छी तरह
1: तरह से
0: से
1: साफ कर लें,
0: है ना।
1: एक और
0: ये
1: बात है ना
0: तो
1: उषा जी की, भोजन जो फ्रिज में हम लोग रख रहे हैं ना, बार बार गर्म करके ना खाएं,
0: हाँ, उसकी जो पौष्टिकता है वो
1: वो
0: खत्म
1: खराब हो
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: है।
0: तो और अपने घरों को साफ रखें, हवादार रखें, और अगर सीलन है तो उससे भी बचें, ताकि हम बस ये सोचना है ना कि जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं जो इस बरसात के मौसम में पनपते हैं उनको दूर करें अपने से और उनसे बचें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता रखें, एक बोतल पानी जरूर रखें, कुछ खाने का सामान रख लें ताकि आपको बाजार की जो सामान है उसे खरीद के खाना ना पड़े, और साथ ही साथ अपने लिए रेनकोट, छाता जो रखते हैं उससे बचें, और अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि वो लोग बारिश में निकलते हैं ना तो उनके पैर गीले रहते हैं, तो उनको पैर को जरूर पोंछने की आदत डलवाइए ताकि वो पैर गीले ना रहे।
1: जिससे
0: छोटे
1: नमी बन
0: बच्चे,
1: जाती है तो फफूंद लगने की ज्यादा चांस
0: हाँ,
1: है। जो लोग
0: ज्यादा,
1: कहता है
0: हाँ
1: गांव में, चाहे पहले भी सुनती होंगी, पैर में पानी लग
0: पानी
1: जाना,
0: लग गया है तो वो पानी लग जाएंगे ना, तो अगर जो शुगर के पेशेंट है तो उनको इनसे ज्यादा परेशानी
1: तकलीफ होती
0: होगी।
1: है। ऐसे जगह पे
0: तो
1: बोरोलिन हो, रात में सरसों का तेल हो,
0: हाँ,
1: गरम
0: या
1: करके
0: पैर
1: उसको लगा
0: सूखा
1: दें।
0: रहे
1: हाँ।
0: उसके बाद आप कोई भी एंटी जो वायरल पाउडर होता है उसे भी लगाएं ताकि वो सूख जाए और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और साथ ही साथ थोड़ा ऊंचे प्लास्टिक के जो जूते होते हैं ना उसे पहने, क्योंकि आजकल ना बारिश में हर जगह सुनने को आ रहा है कि सांप निकलते हैं, बिच्छू हैं, तो कुछ भी जहरीले कीड़े हैं जो काट जाते हैं, तो पैर अगर पानी में है तो कुछ जानवरों से या कीड़ों मकोड़ों से उनके सामना ना हो ताकि उन्हें कुछ काटे ना, और खास करके जहाँ झाड़ियाँ हैं उन्हें साफ कर दें, क्योंकि अगर सांप है ना जो पानी में भर जाता है बिल, वो बाहर निकलने लगते हैं, और बच्चे खेलने के लिए निकल ही जाते हैं पानी में छपाक खेलने के लिए, पता है ना अपना बचपन,
1: अरे
0: जब
1: बचपन
0: बारिश हुई और निकल गए छपाक खेलने के लिए आंगन में, तो
1: लोगों से
0: पहले
1: छुप
0: पहले की बात और थी और आजकल की बात और है। वो बच्चे ना आजकल धूप में धूल में खेलना कम कर दिए हैं, तो इम्यूनिटी भी कम हो गई है, और पहले लोग धूल बालू में ही खेल के अपनी
1: बड़े
0: इम्यूनिटी बढ़ा
1: होते थे।
0: लेते थे,
1: हाँ,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये भी एक कारण है। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो भी भोज्य पदार्थ है उन्हें जरूर
1: खान
0: दें।
1: पान को दुरुस्त रखना है,
0: बिल्कुल,
1: अपने को बहुत सचेत रहना है, अलर्ट रहना है,
0: ताकि अगर बारिश में भीग क्या है ना तो तुरंत कपड़े बदल लें और
1: तुरंत
0: तुरंत गर्म पानी पिए या फिर गर्म पेय पिए,
1: हाँ गार्गल
0: ताकि
1: करें, गर्म
0: गार्गल
1: पानी
0: करें,
1: में गार्गल
0: हाँ,
1: करें, बहुत
0: और
1: लाभदायक होता
0: बस
1: है।
0: शरीर का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ना
1: तब
0: तो
1: घर
0: हर
1: पर
0: मौसम का आनंद आपको अपने आप मिलेगा।
1: हाँ तब घर परिवार के साथ खुशी बांट सकते हैं।

0: श्रोताओं, ये प्यारे से गीत के बाद हम आपको और भी जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि
1: बात है ना उषा जी कि हम लोग जब स्वास्थ्य बात किए तो घूमना फिरना तो जरूरी बनता है कि अगर तबीयत खराब रहेगी तभी तो हम लोग कहीं जा सकते हैं।
0: तबीयत खराब रहेगी तो नहीं जा सकते हैं, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी घूमने का मन भी करता है और लगता है कि चलो इस मौसम का आनंद बाहर जाके भी ले सकते हैं। तो फिर चलिए, अगर आपको घूमने के शौकीन हैं और स्वस्थ हैं तो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान जरूर बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में स्थित है बस्तर और इसका मुख्यालय है जगदलपुर। जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर चित्रकूट जलप्रपात है। ये जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है और मॉनसून में इसकी चौड़ाई 500 मीटर तक हो जाती है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी है। और इसकी चौड़ाई कितनी है?
1: इसकी चौड़ाई के कारण इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है और जब पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है ना तो इसकी गर्जना कई किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। और गर्मियों में जब पानी कम होता है तो जलप्रपात के नीचे बोटिंग भी की जा सकती है। और चित्रकूट के आसपास कई जलप्रपात हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात है, ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर जो स्थित है, और मानसून में नेशनल पार्क बंद रहता है लेकिन साल में बाकी समय खुला रहता है।
0: लेकिन तो, एक बात हम रेणु जी से कहना चाहते हैं अपने श्रोताओं से कि अगर आप जलप्रपात यानी कि फॉल्स के पास जाते हैं तो हमेशा जो दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है ना कि आप जहां पानी गिर रहा वहां तक नजदीक तक गए हैं, सेल्फी लेने गए हैं,
1: वो तो सबसे बचना।
0: ये सब आप घूमने जाएं और बेशक घूमने जाएं अपने परिवारों के साथ दोस्तों के साथ, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें कि आपकी जान बहुत ही कीमती है और आप अगर घूमने गए हैं तो आपको घर पर बहुत सारे लोग इंतजार करते होते हैं कि आप घूम कर आएंगे और अपनी जो भी वहां की दशा है उसे आकर घर बताएंगे।
1: और जब भी जाएं तो घर परिवार के साथ जाएं।
0: नहीं, घर परिवार बच्चों के साथ जाते हैं लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ऐसे नजारे होते हैं कि देख कर मन है ना जो दौड़ने भागने लगता है। और उसके बाद आजकल जो सेल्फी का जमाना है ना तो लोग सोचते हैं कि ऐसी जगह से ऐसी कॉर्नर से सेल्फी लें जो एकदम अनूठा हो।
1: हाँ।
0: और इस अनूठेपन के कारण ही लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हाँ। और बस इसका ध्यान रखें। और दूसरा ध्यान ये रखें कि पर्यटन स्थल में जब भी जाएं तो वहां की साफ सफाई को बरकरार रखें
1: विशेष। और जैसे दोस्तों के साथ लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि चलते हैं दोस्तों के साथ कहीं जलप्रपात घूमने, तो कहीं भी जाए तो अपने घर में ये जानकारी दे दें। कितनी बार होते हैं कि दो दोस्त मिलके चले गए, बाइक से उठे चल दिए,
0: तो फिर वहाँ क्या हुआ या किसी को भी पता नहीं चलेगा ना कि आप
1: जब घटना दुर्घटना होती है तब लोगों को पता चलता है। तो ऐसी बातें इसलिए ना हम लोग करते हैं ताकि लोग इसमें भी सचेत रहें कि ऐसा ना करें। घर परिवार के साथ रहने पे बहुत बेशकीमती भाई, परिवार का मिलना जुलना बहुत किस्मत वालों को
0: होता है। तो अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें, अपनों का ख्याल जरूर रखें। और अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग गए हैं, छोटे बच्चे गए हैं, तो उनके खाने पीने की, उनके दवा के इंतजाम और कहाँ जाना है, कैस किस रास्ते से जाना है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, तभी घूमने का असली मजा होता है ना।
1: हाँ, और तभी तो हंसते हंसते रास्ते भी कट जाते हैं।

0: और अब रेणु जी चलते चलते एक
1: कुछ बातें
0: जानकारी खेल के विषय में हम बता देते हैं कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इतिहास रचते हुए पुरुषों के 100 मीटर T47 स्पर्धा में शीर्ष दो स्थान हासिल किए जब दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगन काथ ने रजत पदक जीता है। दिलीप ने 10.71 सेकंडों का खेलों का नया रिकॉर्ड का सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं बासिल ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ 10.83 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक हासिल किया है। तो चलिए हम इन सभी को शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ भारत के स्टार वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुष 110 प्लस किलोग्राम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है और स्नैच में 176 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 388 किलोग्राम का भार उठाया है। भाई इन्होंने इतना भार उठाया है तो हम भी इन्हें शुभकामनाएं देते हैं, ढेरों भार उन्हें देते हैं ताकि वो खुशी से
1: पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं
0: ताकि वो आगे भी हमारे देश का नाम रोशन करें। और इसी के साथ अपना जो है रांची कार्यक्रम अब यहीं पर हम संपन्न भी करते हैं और लेते हैं इजाजत।
1: कार्यक्रम जो है रांची से रेणु
0: उषा
1: को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार
1: जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सूर्यवंशम के इस गीत से। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज है।

0: सूर्यवंशम को फिल्म को इस गीत को सुनना चाहा था गांधी चौक रोपर से। हरिदेव मिका, बलविंदर बीरक, जयतेक मीरक, मिका बीरक, ग्राम बड़बुड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। कार्यक्रम का अगला गाना बस थोड़ी देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम जतका किशनपुर से आलम दिलकश, शमाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज। इसी गीत को सुनना चाहता है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिया कौर, बिहार कॉलोनी महासमुंद से बली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गाना। कुमार सानू की आवाज़ है, शब्दों में पिरोया है समीर ने, संगीतवत किया नदीम श्रवण ने।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद।

0: जोहार जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का अगला नगमा आप श्रोताओं के नाम। ततरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, विश्वनाथ साहू हैं लक्षणपुर से और सालिक पुजारी मवाली सिंगारपुर से। सरगुजा बैंड पाठ से सोनिया ठापा, सोनम ठापा, रेशमा ठापा, आदिपा ठापा। बिहार कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफरुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा अकरम वेलदार, उल्लाह आसमा वेलदार। इन सब की पसंद से सुनते हैं फिल्म साजन की बाहों में से ये गाना। आवाजें आशा भोसले और कुमार सानू की है, शब्द रचना समीर के, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप श्रोताओं के नाम सुपाई साइन से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा श्यामदेव, चक्रधरपुर ग्राम गिलिया लोहर से कोमल बेसरा, वसंती सिद्धि कुमारी, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

फिल्म तिलक मंदिर से ये गीत सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। इसी के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं बहनों के लिए कार्यक्रम गृह।

0: हो अगर लंबा सफर या फिर कठिनाइयों से भरी डगर, मुश्किलों से डर के ना पीछे हटना कभी, पानी हो तुम्हें मंजिल अगर,
1: पहुंचना है अगर मंजिल तक, दिल में एक जुनून जगाना होता है। पूछा जब नन्ही चिड़िया से, कैसे बनाती हो आशियाना, बोली वह हंसकर, भरनी पड़ती है उड़ान बारंबार और तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। सब प्रेम नमस्कार सखियों, दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। सखियों, अब तक तो आप जान ही चुकी होंगी कि कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं दो सखियां, मैं राखी
0: और मैं मधु। स्वीकार कीजिए सखियों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम है गृहलक्ष्मी।
1: सखियों कैसी है आप? सखियां बिल्कुल स्वस्थ होंगी, सानंद होंगी और सुबह से लगी घर गृहस्थी के कामों में थोड़ा सा ब्रेक लेकर चाय के साथ अपने इस प्रिय कार्यक्रम का लुत्फ उठा रही होंगी।
0: तो सखियों, कार्यक्रम की शुरुआत इस बात को बताते हुए कर रहे हैं कि आज महान साहित्यकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। हिंदी कथा साहित्य में मुंशी जी का अद्वितीय योगदान हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है।
1: हाँ, समाज की नब्ज पर जिसकी उंगलियों का स्पर्श था, जिसकी हर कहानी में जीवन का जीवंत संघर्ष था, कलम को जिसने शोषितों की आवाज बनाया, प्रेमचंद नाम ही हिंदी साहित्य का उत्कर्ष था।
0: बिल्कुल राखी, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, बल्कि उसके माध्यम से समाज की वास्तविक तस्वीर को उकेरा और शोषित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए आवाज दी।
1: सही कहा तुमने, मुंशी जी ने अपनी रचनाओं में जिस यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली, वह सिर्फ साहित्यिक अभिव्यक्ति ही नहीं थी, बल्कि वह सामाजिक आंदोलन था जिसमें उपेक्षित, शोषित, पीड़ित के साथ साथ नारी समस्याओं को भी मुखर किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए जगाया।
0: बिल्कुल, इसीलिए इसकी सबसे सशक्त और संवेदनशील अभिव्यक्ति उनके नारी पात्रों में दिखाई देती है राखी। प्रेमचंद की कथाओं की नारी केवल गृहस्थी की धुरी या दया की पात्र नहीं बनना चाहती, बल्कि वो संघर्षशील, चेतना से भरी हुई और आत्मसम्मान की प्रतिरूप है।
1: स्त्रियों की अच्छाई बुराई के साथ पहली बार मुंशी जी ने उनके जीवन की हर समस्या, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष की बात की,
0: क्योंकि वे चाहते थे कि सामाजिक बंधन एवं स्वीकृत प्रथाओं ने जिस तरह से नारी को जकड़ रखा था, उससे उन्हें मुक्ति मिले, वे भी समान अधिकार के साथ जी सकें।
1: बात करें उनकी कृति सेवा सदन की, तो इसमें नारी पात्र सुमन का बेमेल विवाह इसका ज्वलंत उदाहरण है ना मधु? पढ़े लिखे सुमन का विवाह दहेज के अभाव में बड़े उम्र के गजाधर पांडे से हो जाता है।
0: दहेज प्रताड़ना और कई कठिनाइयों की शिकार सुमन ने जिस रूप बाजार की राह को अपना लिया, वहां सुमन घृणा की पात्र नहीं थी, बल्कि मुंशी प्रेमचंद ने समाज को स्पष्ट तौर पर दिखाया कि जिस समाज ने सुमन को वहां ला खड़ा किया है, वो ही असली घृणा का पात्र है, वो ही दोषी है।
1: इसी तरह उपन्यास निर्मला में भी कहानी के मुख्य पात्र निर्मला का विवाह भी दहेज के कारण एक 3 बच्चों के पिता तोताराम से होना बेमेल विवाह को ही तो दर्शाता है ना मधु?
0: उनके 2 दर्जन से अधिक उपन्यासों में से निर्मला, मंगल सूत्र, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा तो ऐसे उपन्यास है राखी जो पूरी तरह से नारी चरित्र पर ही केंद्रित है, और अन्य जो भी हैं उनमें भी नारी चरित्र को ही पुरुषों के समानांतर ही दिखाया गया है।
1: हाँ, कुछ एक प्रसिद्ध कथाओं की बात करें तो मुंशी जी की तो बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, दूध का दाम जैसी रचनाएं भी नारी प्रधान चरित्रों के कारण ही जानी जाती है।
0: कथा शिल्प मुंशी प्रेमचंद की नारी संबंधी विचारों की ठोस अभिव्यक्ति गोदान में भी देखने को मिलती है राखी। हाँ, जिसमें कथा के पात्र मिस्टर मेहता, जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं, एक व्याख्यान में कहते हैं कि नारी पुरुषों से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से।
1: कहने का अर्थ यहाँ सखियों यह हुआ कि मुंशी जी के साहित्य में नारी पात्र एक सशक्त सामाजिक चेतना, संघर्ष और मानवीय संवेदना की जीवंत मिसाल है।
0: वो परंपरा से बंधी होकर भी विद्रोह का बीजोपन करती है और उस विद्रोह के साथ रहती है।
1: मुंशी प्रेमचंद की इस पंक्ति का जिक्र करना चाहूंगी कि नारी स्नेह चाहती है, अधिकार और परीक्षा नहीं।
0: सचमुच मुंशी जी की उस साहित्य सोच को दर्शाता है ये बात, जहाँ स्त्री पुरुष की छाया नहीं बल्कि स्वाभिमानी, जागरूक और विचारशील है।
1: बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की दृष्टि में नारी केवल सहचरी नहीं बल्कि क्रांति का विश्वास भी है।
0: त्याग क्षमा की मूर्ति ही नहीं, न्याय की गूंजती आवाज भी है।
1: हाँ, उनकी कथाओं में निखर उभरा था स्त्री का सच्चा स्वाभिमान, जो मिटा रूढ़िवादी तमस को युगों युगों तक जलाती रहेगी चेतना की मशाल।
0: तो अब सखियों को राखी सुनवा दिया जाए। फिल्म हीरा मोती का एक मीठा सा वो गीत जो मुंशी जी द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा पर आधारित है।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और आपके साथ हैं हम दो सखियां मधु और राखी।
2: अब कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर चलते हैं सखियों, और सुनवाते हैं आपको एक भेंट वार्ता। आज की मेहमान हैं शामाइता बसु, और आज का विषय है फिजियोथेरेपी सीखे बनाए करियर, और इनसे बातचीत की है रेडियो सखी राखी ने।

0: नो, आज के दौर में चिकित्सा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, साथ ही नए नए रास्ते भी खुल गए हैं और आजकल युवाओं की रुचि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में करियर बनाने की तरफ ज्यादा देखी जा रही है। तो आइए आज अपने कार्यक्रम में हम इसी विषय पर जानकारियां लेते हैं और इस विषय पर बातें करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं। आप हैं डॉक्टर श्यामाइता बासु, आप असिस्टेंट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। श्यामाइता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है?
1: तो फिजियोथेरेपी मतलब जब हम किसी व्यक्ति का या फिर किसी बीमारी का इलाज करने का जो तरीका है उसको हम थेरेपी बोलते हैं, और फिजियो मतलब जो हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, मतलब कि हमारी बॉडी जैसे काम करता है। खास करके जब हम हमारा पैर और हाथ का मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो थेरेपी होता है उसको हम फिजियोथेरेपी बोलेंगे। और उसका जरूरत कब पड़ता है कि जब कोई इंसान, अगर उसको चोट पहुंचता है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई ज्यादा एज, ज्यादा उम्र वाला कोई इंसान जिसका कोई हड्डी का बीमारी हो या फिर उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो, उसका जो बोन डेंसिटी है वो थोड़ा कम हो गया हो, जिस केस में देखा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, तो उनका जो हड्डी है, हड्डी का जो ताकत है वो बहुत कम हो जाता है, और उस केस में फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भूमिका रहता है कि वो उस इंसान का जो जो खोया हुआ ताकत है अपने मसल का या फिर अपने बोन का, उसको फिर से दोबारा जगाने के लिए या फिर दोबारा पाने के लिए फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है या फिर भूमिका रहता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने की, इतने बढ़िया तरीके से आपने बताया। अगर इस क्षेत्र में कोई करियर बनाना चाहे तो कौन सा कोर्स उसे करना चाहिए?
1: अच्छा, तो इस केस में मैं ये बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी में कोई भी करियर बनाने के लिए पहले तो 12वीं तक पास करना है, मतलब क्लास 2 तक साइंस होगा तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद हम बैचलर्स कर सकते हैं, जिसको हम बीपीटी बोलेंगे, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। उसके साथ साथ डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बीपीटी का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा डिप्लोमा से अगर हम कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि जो बीपीटी का कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, उसमें इंटर्नशिप रहता है 1 साल का। तो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो बीपीटी में थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद भी, बैचलर्स के बाद भी हम एमपीटी कर सकते हैं, मतलब कि मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। वो अगर हम करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो तो बढ़ेगा ही, डिग्री तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा।
0: और इस फील्ड में जैसा आपने कहा बीपीटी या एमपीटी कर लें या डिप्लोमा कर लें, तो रोजगार के क्या अवसर है?
1: तो इस केस में हम ये बताएंगे कि जैसे मैं बोली कि बीपीटी कोर्स में इंटर्नशिप रहता है, तो इंटर्नशिप के टाइम पे क्या होता है कि हॉस्पिटल पोस्टिंग होता है या फिर जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे भी पोस्टिंग रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो इंटर्नशिप में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटर्नशिप में, तो डायरेक्टली वो जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में या फिर जिस क्लिनिक में इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहीं से उनका जॉब लग जाता है या फिर नौकरी लग जाता है। तो वो एक बहुत बढ़िया चांस रहता है स्टूडेंट्स के पास, बच्चों के पास, कि वो इंटर्नशिप में आप अपने आप को वो प्रूफ करे, अपने आप को मतलब खुद सीखे भी, और वो अपने आप को प्रूफ करके दिखाए कि वो उसका मतलब नॉलेज कितना है। और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इस केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। तो उस केस में ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि इंटर्नशिप के टाइम पे आता है या फिर उससे पहले भी जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स होता है वहां से भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज आता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिकल नॉलेज से अगर अपने आप को वो प्रूव कर सकता है तो वो इंटर्नशिप के वहीं से उन लोग का जॉब या नौकरी लग जाता है। उसके बाद अगर हम हमारे बच्चे अगर MPT कर रहे हैं, मतलब कि मास्टर्स कर रहे हैं, तो मास्टर्स के बाद क्या होता है, हम खुद का एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल सकते हैं। छोटा सा मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग का बात कर रही हूँ। जब हम स्टार्ट करते हैं तब ऑब्वियसली एक छोटा सा हम अपना क्लिनिक खोल के फिर उसको हम आगे जाके और भी बड़ा कर सकते हैं और भी एक्सपेंड कर सकता है। तो वो MPT के केस में उसका चांसेस ज्यादा रहता है क्योंकि हमारा डिग्री या क्वालिफिकेशन भी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो भी बढ़ जाता है। और जैसे हम सबको मालूम है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर या फिर एक एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट ही ढूंढते हैं जो उनको बहुत ही कम वक्त में ठीक कर सकते हैं। तो ये क्लिनिक वाला भी हम कर सकते हैं और भी एक करियर का जो चांस रहता है फिजियोथेरेपी में वो होता है कि हम टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज का प्रोग्राम चलता है, फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे हम एज लेक्चरर एज असिस्टेंट प्रोफेसर हम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का बात आता है तो हम PhD भी कर सकते हैं आगे जाके, जिसके जरिए हम और हम अपना डिग्री या क्वालिफिकेशन भी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रमोशंस रहता है टीचिंग लाइन में, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, ये सारे प्रमोशन में हमें वो हेल्प करेगा अगर हम PhD डिग्री भी आगे करने का सोच रहे हैं तो।
2: यानी कि बहुत सारे विकल्प हैं। अगर कोई एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहे तो ऐसे आप बताएं कि उसमें क्या गुण होना चाहिए।
1: अच्छा, तो देखिए, एक तो मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, हम कोई भी करियर चुने, पर्टिकुलरली अगर हम मेडिकल करियर के बारे में बात कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी या गुण जो होना चाहिए वो होता है ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी के साथ साथ अपने पेशेंट के प्रति हम कितना डेडिकेटेड है, मतलब पेशेंट हमारे लिए भगवान के समान है, हमें हमेशा अपने अंदर वो उसको डेवलप करना है, तो वो सबसे पहला गुण होगा जो मैं बताना चाहूंगी। उसके बाद जो हम बोलेंगे जो पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हम एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, जब हम फिजियोथेरेपी कोर्स करते हैं, मतलब हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर हम पूरा कोर्स हम देखेंगे BPT का तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वो होता है एनाटॉमी। क्यों? क्योंकि जब हम एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहला सवाल में ही बोला था कि पेशेंट का जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है, जो मसल का, हड्डी का जो मूवमेंट होता है, उसको स्टेबिलाइज करना ही हमारा मेन मकसद है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो वो समझने के लिए वो मूवमेंट कहाँ पे हैम्पर हुआ है, कहाँ पे उस मूवमेंट में दिक्कत हो रहा है उस इंसान को, उस पेशेंट को, वो समझने के लिए एनाटॉमी का जो नॉलेज है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब हम एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हड्डी नहीं आता है, उसमें हड्डी के साथ साथ लिगामेंट्स आते हैं, हमारे टेंडन्स आते हैं, हमारे मसल्स आते हैं, तो वो सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे कौन सा मसल, कौन सा लिगामेंट को कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, कितने जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, कौन से बोन में कौन से जॉइंट होते हैं, वो जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो नर्व सप्लाई होते हैं, क्योंकि नर्व सप्लाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब हम एक कोई फ्रैक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी का हड्डी टूट गया, जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो नर्व सप्लाई है वो भी बहुत केस में ऐसा देखा जाता है कि नर्व सप्लाई पूरा टूट चुका होता है, तो उस केस में हमें कुछ नर्व रिपेयर करना पड़ता है, किसी किसी केस में सर्जरी का भी जरूरत होता है। तो वो सर्जरी करने के बाद भी वो वापस हमारे पास ही आते हैं, हमारे पास एज इन फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फुल रिकवरी के लिए। अगर सर्जरी भी हो रहा है उसके बाद भी फिजियोथेरेपी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वो इंसान फिर से अपने पैरों में खड़ा हो या फिर से वो प्रॉपर पहला जैसा मूवमेंट कर सके।
2: जी, अब चलते चलते कुछ संदेश अगर आप देना चाहें हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं।
1: मैं यही बोल

0: का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि अगर एक सर्जरी भी हो रहा है कि किसी का फ्रैक्चर हो चुका है, उसका नर्व डैमेज हो चुका है, तो उसका सर्जरी हो रहा है, तो सर्जरी ऑब्वियसली कौन करेगा, जो एमबीबीएस डॉक्टर है वही करेगा। बट वो सर्जरी होने के बाद भी फिजियोथेरेपी करने के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही भेजेगा। ये कहने का मतलब यही होता है कि कभी भी अपने मन को छोटा या फिर अपने दिल को छोटा मत करना कि ठीक है फिजियोथेरेपिस्ट हुआ तो क्या ही हुआ, ये तो कुछ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही एक फ्लरिशिंग फील्ड है जिसमें हम एट पर विद डॉक्टर्स हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर के साथ भी हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट हम मतलब वो लोग हायर करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट जस्ट फॉर द पेशेंट्स, कि जो पेशेंट का सर्जरी हुआ है उसके बाद वो कैसे रिकवर होगा थ्रू प्रॉपर फिजियोथेरेपी कोर्स।
1: तो संभावनाएं बहुत हैं।
2: डॉक्टर श्यामाइता बासु मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना सखियों भेंट वार्ता, भेंट करता थी, भेंट वार्ताकार थी श्यामाइता बसु, भेंट करता थी राखी शर्मा, और आज का विषय था फिजियोथेरेपी सीखें बनाएं करियर।
1: हाँ तो मधु, अब सावन का महीना है, बहनें शिव भक्ति में डूबी हुई हैं, क्यों न सुनवाएं उन्हें एक शिव भक्ति वाला ये गीत।
3: बिल्कुल।

0: सखियों अब एक योजना के बारे में आपको बता दें जो आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा समय समय पर संचालित की जाती है, उन्हीं में से एक है उड़ान योजना।
1: हाँ सखियों, नई उड़ान योजना उन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए चलाई गई वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सरकारी परीक्षाओं द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होते हैं।
0: वित्तीय परेशानियों को कम करके ये योजना पात्र उम्मीदवारों को संसाधनों की कमी के बोझ के बिना तैयारी करने

0: का जो है अवसर देती है ध्यान केंद्रित करने के लिए चलाई जा रही है ताकि छात्र भटके नहीं।
1: बिल्कुल
0: तो मधु इस योजना का पहले लाभ उठाएं और अब क्या कह रही हो?
1: अब सखियों से कहना चाहेंगे कि स्टूडियो की घड़ी इशारा करने लगी है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए, तो चलते चलते बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। सखियों अब दीजिए आज्ञा अपनी रेडियो सखी मधु और
0: राखी को।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 110.5 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आइए सुनते हैं फिल्म नैया से ये गीत. यसुदास की आवाज है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का.

कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म चश्मे बद्दूर से आवाजें हरि मंत्री शुक्ला और यशुदास की है। इस गीत को लिखा इंदु जैन ने, संगीतबद्ध किया राजकमल ने, हेमंती शुक्ला और यशुदास की आवाज़।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दो वतन से ये गाना। इस गीत को लिखा शकील पदायनी ने, संगीतबद्ध किया रवि ने।

अब सुनिए फिल्म मेरा साया से ये गाना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की है, सब रचना राजा मेरी अली खान के, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म आदमी से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदोहनी का लिखा हुआ यह गीत और संगीतवत किया नौशाद का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, presiding officer Dilip Saikia took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticized the opposition for not participating in the discussion. He said the time for discussion was already cleared in the Business Advisory Committee. After passing the bill, the House was adjourned for the day due to opposition uproar. The House will again meet on the 3rd of August at 11 a.m. When the Rajya Sabha assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour. Several members raised issues of urgent importance. However, the opposition members began protest with sloganeering, pressing for their demands. As the pandemonium continued, the chairman adjourned the House till Monday. The government has said it is sensitizing other countries on an ongoing basis on the issue of cross-border terrorism emanating from Pakistan during various high-level and other official visits. In a written reply in Lok Sabha today, Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh said the government has also set up joint working groups on counter-terrorism with 31 countries and 6 multilateral groupings where such issues are regularly taken up. The minister said several countries have called upon Pakistan to not allow its territory to be used for terrorism in any manner. BJP MPs from Jharkhand today staged a protest in front of the Mahatma Gandhi statue at Parliament premises, demanding a CBI investigation into the alleged JPSC paper leak. Union Minister for Women and Child Development and BJP MP from Koderma, Annapurna Devi, alleged that multiple paper leak incidents, including the JPSC paper leak, have been reported in Jharkhand under the JMM-led government. Talking to Akashvani News, the minister said the youth of Jharkhand have been protesting over the issue. Union Minister of State for Defence and Lok Sabha MP from Ranchi, Sanjay Seth, accused the JMM-led state government of resorting to eyewash by ordering a CID inquiry into the matter. Family members of Delhi police personnel injured during the protest at Jantar Mantar in New Delhi have alleged that police officers were deliberately targeted during the demonstration. Addressing a press conference in New Delhi today, they claimed that personnel deployed on the front line were surrounded, pelted with stones, and physically assaulted by violent elements in the crowd. The family members also claimed several police personnel sustained serious injuries during the incident. They urged authorities to ensure strict action against those responsible for the alleged attacks and called for greater protection for police personnel deployed during public demonstrations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Global Drug Regulatory Conclave 2026 will strengthen international cooperation and reinforce India's position as a global pharmaceutical innovation hub. In a social media post, Mr. Goyal said the two-day conclave, which commenced at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, is India's flagship international forum on pharmaceutical regulatory cooperation and convergence. The event has brought together heads and senior officials of national drug regulatory authorities across the world. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now begun targeting women protesters demanding basic rights. Pakistani security forces opened fire on women demonstrators gathered in large numbers in Rawalpindi and Mirpur, where they were raising slogans against the crackdown. At the Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovepreet Singh won a silver medal in the men's 110-kilogram category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in women's discus throw at Glasgow last night. Benchmark equity indices were trading with modest gains in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 78,161 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का किया स्वागत, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी बनेगी। जेपीएससी परीक्षा की कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा सांसदों ने सीबीआई जांच की मांग की। रांची में सीआईडी आज पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से कर रही है पूछताछ। राज्य में वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा। जाइका परियोजना के तहत 20 वन प्रमंडलों में सामुदायिक भागीदारी से होंगे विकास कार्य। माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं मिसर बेसरा, मोचू मुर्मू और बीरेंद्र हांसदा 14 दिन की पुलिस रिमांड पर। नेटवर्क और फंडिंग समेत कई पहलुओं पर होगी पूछताछ। और भारतीय फुटबॉल टीम 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता में होगा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक निवारण विधेयक संसद से पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक और वंदे मातरम विधेयक के संसद से पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नया कानून पेपर लीक पर प्रभावी अंकुश लगाएगा, जबकि वंदे मातरम विधेयक राष्ट्रगान समान सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: कल का दिन भारत के संसदीय इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था और वो तो ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस सिस्टम लेकर आएंगे जिससे इस तरह के क्वेश्चन पेपर लीक की संभावना नगण्य हो जाए। और उसी के साथ वंदे मातरम के लिए भी 3 साल के सजा का प्रावधान हुआ। अगर आप कोर्ट का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ा कदम था।
1: इधर वंदे मातरम को कानून के जरिए अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि देशभक्ति कानून से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय वंदे मातरम का सम्मान करता है और इसके लिए अलग कानून की आवश्यकता नहीं है।
4: भक्ति के लिए अगर हिंदुस्तान में अगर कोई कानून बनता है तो हमें लगता है कि यह सबसे बड़ी विडंबना है। वंदे मातरम हर भारतीय और भारतीयता की एक पहचान है और वंदे मातरम जब होता है तो स्वाभाविक तौर पे हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है, तो इसके लिए कोई कानून लाने की आवश्यकता नहीं।
1: झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा

0: समक्ष प्रदर्शन कर कथित जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सांसदों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज फिर पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व उनसे भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और निजी एजेंसी की भूमिका सहित विभिन्न बिंदुओं पर अब तक दो बार लंबी पूछताछ की जा चुकी है। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जाइका के प्रतिनिधिमंडल ने रांची के वन भवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार से मुलाकात कर झारखंड में वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन पर चर्चा की। जाइका परियोजना के तहत राज्य के 20 वन प्रमंडलों, 47 वन क्षेत्रों और लगभग 1400 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के साथ मिलकर वन संसाधनों के सतत उपयोग, जल मृदा संरक्षण और महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। पीसीएफ संजीव कुमार ने कहा कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वन संरक्षण को नई गति मिलेगी और जाइका ने तकनीकी व वित्तीय सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मलेरिया, डेंगू, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर रांची के योजना भवन में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए ग्रामीण विकास, नगर विकास, शिक्षा और स्वच्छता समेत सभी विभाग मिलकर इसे जन आंदोलन बनाएं और जिला से पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के DSW डॉ. सुदेश कुमार साहू ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल होंगे। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
1: 9 तारीख को हम लोग अपना दीक्षांत समारोह करेंगे, जिसमें कि हमारे बीए में 6 सेमेस्टर तक क्लियर कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो डिग्री 22-26 सेशन वाले को 6 सेमेस्टर तक की मिल गई है, वो तो वो होंगे, प्लस एमए के हमारे जो बच्चे हैं वो होंगे।
0: प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसर बेसरा, मुढ़ू मुर्मू और गौरव उर्फ बीरेंद्र हांसदा को अदालत ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब झारखंड पुलिस, एनआईए और आईबी की टीमें उनसे माओवादी नेटवर्क, लेवी वसूली, हथियारों की आपूर्ति, फंडिंग और संगठन के सक्रिय कैडरों के संबंध में पूछताछ करेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 33 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि इस मामले में बिहार के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
2: पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत रात में छापेमारी के दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इन व्यक्तियों से कुल मिलाकर 2.5 kg अफीम की जब्ती हुई है। दूसरी घटना हमारे सतपुरवा थाना क्षेत्र की है, जिसमें कि एक संदिग्ध वाहन बोनट को तलाशी लेने पे तथा डिक्की की तलाशी लेने से कुल मिलाकर 33.5 kg से ज्यादा गांजा उससे जब्त किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति जो कि बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले, इनकी गिरफ्तारी हुई है।
0: आज सुबह के सेशन में बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। और 5 बार का फीफा विश्व कप विजेता ब्राजील भारतीय फुटबॉल टीम से कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगा। यह मैच 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक

स्टेडियम में खेला जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कल इसकी घोषणा की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का किया स्वागत। कहा, इससे परीक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी बनेगी। जेपीएससी परीक्षा की कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा सांसदों ने सीबीआई जांच की मांग की। रांची में सीआईडी आज पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से कर रही है पूछताछ। राज्य में वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा। जायका परियोजना के तहत 20 वन प्रमंडलों में सामुदायिक भागीदारी से होंगे विकास कार्य। माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं मिसर बेसरा, मोचू मुर्मू और बीरेंद्र हांसदा 14 दिन की पुलिस रिमांड पर। नेटवर्क और फंडिंग समेत कई पहलुओं पर होगी पूछताछ। और भारतीय फुटबॉल टीम और 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता में होगा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी। इनसे सुनते हैं खमाज में ठुमरी।

अभी आप सिद्धेश्वरी देवी से खमाज में ठुमरी सुन रहे थे। संगत कलाकार थे चतुरलाल सबरी खान। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इसमें सुनेंगे अनूप जलोटा की आवाज में चंद गजलें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा को।

0: एक गम की वजह है।
1: अनूप जलोटा के गाए इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल

0: शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
2: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
3: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
4: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य

की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं पंकज उधास और साथियों की आवाज में फिल्म नामक से ये गाना। इस गीत को लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, धुन माफ कीजिएगा, इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं मेरा गांव मेरा देश से ये गाना।

फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं माया गोविंद का लिखा हुआ ये गीत। फिल्म है सावन को आने दो से, आवाज यशुदास और सुलक्षणा पंडित की है, संगीतवत किया राजकमल ने।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म गीत गाता चल से। जसपाल सिंह की आवाज है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप थोड़ी देर में सुनेंगे।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएस

0: पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही सीआईडी जांच को महज एक दिखावा करार दिया।
1: झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से भारी बारिश में भी। उनकी एक ही डिमांड है कि जेपीएससी पेपर लीक मामला और जेएसएससी जो भर्ती घोटाला उसकी सीबीआई जांच कराओ, क्योंकि वहां खुला रेट है, 1.5 करोड़ दो डीएसपी बन जाओ। अब पहला हिंदुस्तान में ऐसा केस है कि बाकायदा एक होटल लीज भी लिया गया, क्यों? आंसर शीट लिखवाने के लिए।
0: इधर रांची में भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही जैसी परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज लगातार तीसरे दिन रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। इससे पहले जांच एजेंसी उनसे 2 दिनों में करीब 8-8 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से जुड़े घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। माय भारत प्लेटफॉर्म के नेतृत्व में यह नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा। इसके तहत हर रविवार खेल, नुक्कड़ नाटक और ध्यान सत्र जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112 और बाल हेल्पलाइन 1098 सहित कई आपातकालीन सेवाएं एक ही मंच पर तुरंत उपलब्ध होंगी। चतरा जिले में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने पिछले 7 महीनों में 61 रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रिकॉर्ड 758 यूनिट रक्त संग्रहित किया है। सोसाइटी के सचिव धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय थैलेसीमिया, कैंसर और सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को मिल रहा है।
2: चतरा रेड क्रॉस के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच रक्त मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर थैलेसीमिया के जो मरीज हैं, कैंसर रोगी हैं या फिर आदिम जनजाति परिवार के लोग हैं, उन्हें निशुल्क रक्त मुहैया कराया जाता है। हमारा निवेदन होगा आम जनता से भी कि रक्तदान के प्रति जागरूक हों और खुलकर रक्तदान करें, ताकि हमारे दिए गए रक्त से किसी की जान बचती है तो हम बचा लें।
0: जामताड़ा जिले में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सोनवाद गांव के एक और मिहजाम थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को पकड़ा गया। इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 8 फर्जी सिम कार्ड और 2 एटीएम कार्ड एवं 1 दोपहिया वाहन बरामद हुआ है। लोहरदगा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शहरी क्षेत्र के बीएस कॉलेज रोड पर हुई, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी,
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी,
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। आज छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
2: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आप

0: सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
0: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
2: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
2: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
3: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जानें।
2: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
3: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
6: प्रणाम गुरुदेव।
7: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
6: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कक्षों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
7: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
6: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
7: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
6: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनके रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूं।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता यह था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।

0: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
1: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
2: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
0: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
3: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
4: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
3: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
4: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
6: लयात्मक प्रस्तुति।
5: शीर्षक है
6: अभी न होगा मेरा अंत।
5: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आइए सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो से ये गाना. यशुदास की आवाज है. पी पंकज ने इस गीत को लिखा, संगीतवत किया राजकमल ने.
2: जो देखा चाहो आ...

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। शैलेंद्र सिंह ने इस गीत को लिखा, चित्रगुप्त ने संगीतबद्ध किया।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और 100.5 मेगा हर्ट्स पर। बस अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज लगातार तीसरे दिन रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से जुड़े घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोडरमा स्वच्छ भारत मिशन फेज दो के तहत राज्य का पहला ओडीएफ प्लस जिला बनने जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजिता हिम्ब्रम ने कोडरमा में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि जिले ने 71% लक्ष्य हासिल कर लिया है और अगस्त महीने तक शेष कार्य पूरे कर इसे मॉडल जिला घोषित किया जाएगा। चतरा जिला प्रशासन ने इको पार्क में बैटरी चलित ई कार्ट सेवा शुरू करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। एनटीपीसी इसके लिए 13 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। 75 एकड़ में फैले इस पार्क में ई कार्ट सेवा शुरू होने से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को बड़ी सहूलियत होगी। गिरिडीह में आज 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। इसे सुनिए चर्चा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम, कपड़े का थैला, सेहत भला, आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, हुनर है तो रोजगार है, ख्वातीन की तालीम सुनेंगे, मकाला सुनेंगे, इंसानी तस्करी से बचाओ, अगाड़ी की हिफाजत। कंपियर होंगे राजदा हुसैन और शगुफ्ता बानो, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अभी हम इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी के साथ ही अब हमारे घर जाने का वक्त हो चुका है शगुफ्ता।
1: घर जाने का वक्त तो हो गया है, मैं भी घड़ी देख रही हूँ।
0: तो खैर कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर से आएंगे, कुछ और बेहतरीन टॉपिक्स अपने दोस्तों के लिए लेकर आएंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सामईन, आप अपना ख्याल रखें और मुझे यानी राजदा
1: और शगुफ्ता
0: को दें इजाजत। आदाब।
1: आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, कंपेयर रहे थे राजदा हुसैन और शगुफ्ता बानो, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम, प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे 5 बजे। युवाओं का कार्यक्रम व्यूवाणी आप सुनेंगे 5:02 पर। श्रमिक लोक ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 5:30 पर। 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

6 बजे आप सुनेंगे खेती बारी। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मिश्रित खेती करें, प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे, प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। भेंट करता है संजीव कुमार लाल, सूत्रधार युवराज कुमार और अरविंद कुमार मिश्रा, प्रस्तुति प्रभु शरण की। 6:32 पर कार्यक्रम होगा हमारी दुनिया, जिसमें आज चर्चा होगी जीवन जीना भी एक कला है। नागपुरी वार्ता भी आप सुनेंगे, एक भेंट वार्ता है एक नागपुरी लोक कलाकार महावीर साबू से। भेंटकर्ता कृष्ण जीवन पौराणिक, सूत्रधार युवराज कुमार और अरविंद कुमार मिश्रा। 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:11 पर जिले में आजकर और 7:15 पर कार्यक्रम होगा आदिवासी अखड़ा। आज का ये कार्यक्रम होगा हो भाषा में। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी विश्व रेंजर दिवस के बारे में, वन्य जीवों का शिकार अपराध है। सूत्रधार है सुनेना बोईपाई और प्रस्तुत करता है गौरव कुमार पांडे।

7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम सहिया प्रसारित किया जाएगा। 8 बजे संसद समीक्षा, 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, 8:30 पर सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या और न्यूज एट 9 बजे उर्दू में समाचार 9:15 पर प्रसारित होंगे और 9:30 पर करंट अफेयर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

रात्रि 10 बजे सुनहरी यादें और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरीपक राग धानी में आलाप और जोर। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सांझ सरगम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मुमताज के गीत। जी हाँ, मुमताज एक ऐसी अदाकारा जो सालों से नहीं बल्कि दशकों से बड़े पर्दे से दूर है, लेकिन आज भी उनकी फिल्मी गलियारों में खूब चर्चा होती है। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। मुमताज की गिनती 60 और 70 के दशक की बड़ी अदाकाराओं में से होती है। उनका बतौर लीड एक्ट्रेस करियर छोटा लेकिन बेहद सफल रहा। दारा सिंह जैसे दिग्गज के साथ उन्होंने 16 फिल्मों में काम किया, जबकि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के साथ उन्होंने एक के बाद एक लगातार 8 सुपरहिट फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था। जी हाँ, तो आज बातें होंगी अभिनेत्री मुमताज के बारे में, तो चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम सांझ सरगम में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज की। तो मुमताज का जन्म भारत की आजादी से कुछ दिनों पहले ही यानी 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। मुमताज की माँ और चाची दोनों ही फिल्मी दुनिया में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करती थी। ऐसे में मुमताज ने भी बतौर बाल कलाकार सिनेमा में अपनी शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले वो सोने की चिड़िया नाम की फिल्म में नजर आई थी और ये फिल्म साल 1958 में रिलीज हुई थी। वहीं इसी साल आई फिल्म तलाक में भी उन्होंने काम किया था। मुमताज की न सिर्फ अदाकारी को ही बल्कि उनकी खूबसूरती और डांस को भी काफी पसंद किया गया। आज ये अभिनेत्री अपना 79वां साल जन्मदिन मना रही है और बचपन से ही उनका जो है फिल्मी घराने से ताल्लुक भी रहा है। 11 साल की उम्र में उन्होंने सिनेमा में कदम रखा था। साल 1967 में आई फिल्म राम और श्याम मुमताज के लिए करियर बदलने वाली साबित हुई। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने डबल रोल निभाया था और इसके बाद मुमताज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुमताज के लिए 1967 का जो साल रहा बहुत ही अच्छा रहा और ये फिल्म काफी हिट भी रही। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हुआ। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम, और कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज के बारे में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। लीड एक्ट्रेस के रूप में मुमताज ने कई फिल्मों में बतौर स्टंट हीरोइन काम किया था, यानी ये उनकी एक्शन फिल्में थी। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी दारा सिंह के साथ बनी थी। दोनों की 16 में से आधी से ज्यादा फिल्में सफल रही थी। हालांकि स्टंट हीरोइन का टैग मिलने के चलते शशि कपूर और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज एक्ट्रेस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी लगातार 8 सुपरहिट फिल्में आई और मुमताज स्टार बन गई। तब धर्मेंद्र ने भी उनके साथ काम किया। एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र, दारा सिंह, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, फिरोज खान और शम्मी कपूर जैसे एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन भी शेयर किया। हालांकि उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा राजेश खन्ना के साथ पसंद की गई।

1960 के दशक में मुमताज और शमी कपूर ने साथ फिल्मों में काम करते हुए एक दूसरे के प्रति लगाव भी महसूस किया और कई इंटरव्यू में शमी कपूर ने ये स्वीकार भी किया था कि वे मुमताज से विवाह करना चाहते थे, लेकिन मुमताज ने उनके प्रस्ताव को सम्मानपूर्वक ठुकरा दिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका करियर था। उस दौर में कपूर परिवार की परंपरा थी कि उनकी बहू फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी और मुमताज ने अपने अभिनय करियर को छोड़ने के लिए ही उनसे शादी करने के प्रस्ताव को ठुकराया। तो आइए सुनते हैं उनकी और शमी कपूर की फिल्म का एक गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेल विकास के लिए खेलो इंडिया योजना को भी विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने लोकभवन में कुलपतियों, शिक्षाविदों और गणमान्य अतिथियों से संवाद करते हुए राज्य की जनता के प्रति आभार प्रकट किया। रांची में भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही जैसी परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। हजारीबाग जेल में आज आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मुर्गी पालन और सिलाई कटिंग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार की समर्पण नीति का उद्देश्य इन कैदियों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार संताल परगना और कोल्हान संभाग में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। उन्होंने पुरुषों की 110 किलोग्राम से अधिक भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवप्रीत सिंह और महिला चक्का फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कलिरामना की सराहना की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आपने सुना आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की संध्याकालीन सभा में। आज की इस संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूं मैं संगीता। आइए श्रोताओं करते हैं आज के संध्याकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी श्रोताओं को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता को हमने आपके लिए सजाया है एक ही गीतकार अनजान के लेखनीबद्ध गीतों के साथ। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या के 6:00 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचारों का। संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम नन्ही दुनिया, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा संध्या के 6:30 का। संध्या 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप सुनेंगे आप सभी श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। रात्रि के 8:00 प्रसारित होगी आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप लेंगे रात्रि के 8:15 पर। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। यहीं से प्रसारित News@9 को आप सुनेंगे रात्रि के 9:00। रात्रि के 9:15 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि के 11:00 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमश हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं, हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायवासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गीतकार अनजान की लेखनी से निकले हुए चंद चुनिंदा नगमे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म थानेदार से। आवाजें हैं गायक कलाकार बापी लहरी और अनुराधा पौडवाल की, बोल अनजान के हैं और धुन है बापी लहरी की।

गायक कलाकार पप्पी लहरी और एस जानकी के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म साहेब से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत गायक कलाकार पार्वती खान और साथियों के स्वरों में फिल्म डिस्को डांसर से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गीतकार अनजान की लेखनी से निकले चनचुनिंदा नगमे। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म नमक हलाल से, बोल अनजान के, धुन बप्पे लाहिरी की, और इस गीत को आवाज दी है गायक कलाकार आशा भोसले ने।

गायक कलाकार आशा भोसले के स्वर में गाए हुए फिल्म नमक हलाल के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाया एक ही गीतकार अनजान को। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं हमारा आज का अगला कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोए का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज की इस चर्चा में हम बातें करेंगे आधुनिक तरीके से मछली पालन विषय पर। मनोरंजन करेंगे नागपुरी लोकगीत से और भेंट वार्ता के माध्यम से भी हम स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में एक महिला से हम जानकारी लेंगे। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और किसान होने के नाते हमारी जीवन का मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है। और वर्तमान समय में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, उसी अनुपात में जमीनें सिमटती जा रही है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण खेती आज प्रभावित है और कई ऐसे चुनौतियां हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक स्तर पर चाहते हुए भी हमारे युवा किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान समय में कई कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण गोदाम या कृषि क्लिनिक या मंडी हाउस, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि उत्पादों को बेचने की ज़रूरत है उसके लिए जो

सशक्त एक माध्यम है हमारे किसानों तक वो नहीं पहुंच पाने के कारण कहीं ना कहीं हमारे किसान ठगे से महसूस कर रहे हैं और व्यावसायिक स्तर पर खेती करने से संकोच कर रहे हैं। यूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की और बैंकों की भी एक महत्वपूर्ण योजना है, परंतु इसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि कृषि अलाभकारी साबित हो गया है, क्योंकि आज महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। परंतु इसके साथ साथ यदि हम मछली पालन को देखें तो इसमें आर्थिक रूप से हम काफ़ी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जितनी बड़ी क्षेत्र में जितने बड़े भूखंड है उसमें यदि हम धान या गेहूं की खेती करते हैं और उतना ही बड़ा क्षेत्र पर में यदि हम आधुनिक तरीके से मछली का पालन करते हैं तो ये ज़मीन आसमान का अंतर रहता है मुनाफा में। तो आज केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजना है और राज्य सरकार भी इसमें साथ दे रही है। तो वर्तमान समय में श्रोताओं, मछली पालन यूँ तो हम वर्षों से कर रहे हैं, तालाबें हम खोदते हैं 10 फीट 12 फीट काफ़ी चौड़ाई है, बड़ी बड़ी तालाबें हैं, परंतु उसको देखभाल करने में, उन्हें आहार देने में और कीट नियंत्रण या अर्थात मछलियों में होने वाले रोग में हम उसकी समुचित देखभाल नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप हमें उतनी लाभ नहीं दिखाई देती है। परंतु वर्तमान समय में बायोफ्लोक एक तकनीकी है और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर साथ ही साथ केज जो कल्चर है इसके माध्यम से भी लोग आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हो रहे हैं हमारे किसान। बायोफ्लोक एक प्रकार की ऐसी तकनीकी है जिसमें कम पानी और सीमित जगह में टैंकों में या कृत्रिम तालाबों के अंदर सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया की मदद से और मछली के मल मूत्र को प्रोटीन युक्त भोजन में बदला जाता है। और इस तकनीकी से यदि हम मछली पालन करते हैं तो एक साल के अंदर ही 1 किलोग्राम तक बढ़ जाती है। जहां परंपरागत तरीके से मछलियों को यदि हम पालते हैं तो ये संभव नहीं होता है। इसके साथ साथ आरएस प्राणी जिसको बोल सकते हैं, जो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम आरएस आरएएस जिसको कह सकते हैं, या भी एक प्रकार का जमीन के ऊपर टैंकों को बनाकर मछली पालन किया जाता है और भोजन देने में भी ये दोनों प्रणाली काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। उनका देखभाल हम सही तरीके से करते हैं, साथ ही साथ इसमें यही तकनीकी है कि परंपरागत तरीके से जो हम मछली पालन करते हैं तालाबों में तो उसमें ऑक्सीजन का घनत्व बहुत अधिक होता है पानी में, उसके कारण मछलियों को परेशानियां नहीं होती है। परंतु ये दोनों तकनीकी अर्थात बायोफ्लोक तकनीकी और आरएस रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में हमें उन्हें बाहर से हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है और समय समय पर पानी बदलना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर मल मूत्र निकलते हैं मछलियों का और बैक्टीरिया यदि उन्हें ग्रहण करते हैं गंदा हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में उस पानी को हटाना पड़ता है और इस पानी का उपयोग हम साग सब्जियों की खेती में हम लगा सकते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। और इस मछली पालन के इस तकनीकी में सौर ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है, यानी बिजली की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन देने के लिए बिजली का होना ज़रूरी है। हम बाहर से हम ऑक्सीजन उन्हें देते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें बिजली की भी ज़रूरत होती है और आसपास में यदि बड़ी बड़ी नदियां हैं, डीप बोरिंग है, तो वहां से हम पानी को बदल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पानी को बदलने के लिए आसपास में तालाबें हों

या डीप बोरिंग हो, ताकि पानी यदि गंदा होने लगे, उसमें घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे, तो हम उसको बदल सकें। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया हैं उसमें खास देखभाल की ज़रूरत होती है, जो बायोफ्लॉक है, और उसमें नए नए तकनीकी आ रहे हैं, उसमें गुड़ इत्यादि को डाल करके हम और उन बैक्टीरियों को मछलियों के आहार होने लग बढ़ोतरी करा सकते हैं। यूँ तो बहुत सूक्ष्म होते हैं ये बैक्टीरिया, परंतु यदि हम सही तकनीकी और प्रशिक्षण के उपरांत उन बैक्टीरियों को बड़े होने के लिए हम यदि आहार दे सकते हैं, तो मछलियाँ जल्दी ही उन्हें पहचान पाती है और वो आहार के रूप में उन्हें ग्रहण करती है। और मछलियों के जो मल हैं वो पानी में गिरते हैं, और ये बैक्टीरिया मछलियों के मलों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सर्कुलेट होता है सिस्टम में। यदि इस प्रकार की तकनीकों का हम लाभ लें और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मत्स्य योजना और जिला में जो मछली से संबंधित विभागे हैं उनसे हमें संपर्क करना चाहिए, और गांव की आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर इस देश की, इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम इस तकनीक का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मछली पालन विभाग यानी जिला मत्स्य पदाधिकारी या और भी विभाग हैं, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पोर्टल पर हम इसका जानकारी ले सकते हैं, और इसका लाभ हमें जरूर से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई में सभी लोगों को नौकरी या बड़े बड़े उद्योग लगाने में सक्षम नहीं है, परंतु इन दोनों सिस्टम से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर गांव, समाज, राज्य और देश की आर्थिक व्यवस्था को हम मजबूत कर एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम पूरा कर सकते हैं। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे नागपुरी लोकगीत से। इस लोकगीत के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं कि बरसात के इस मौसम में जो बीमारियां फैलने की संभावना रहती है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, और केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत मिशन अभियान, इसके तहत जो योजनाएं चलाई जा रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में हो, हम स्वच्छता की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन हम कैसे जी सकते हैं, तो इस भेंटवार्ता के माध्यम से हम सुनते हैं एक महिला से वो किस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।
1: साथ के इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की संभावना होती है और उसका बचाव कैसे हम कर सकते हैं? तो नामसी जी, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि स्वच्छता क्या है।
2: सबसे पहले सभी श्रोता गण को मेरा नमस्कार। स्वच्छता जो है वो केवल एक आदत नहीं होता है, बल्कि वो स्वस्थ जीवन जीने का आधार होता है। इसी संदर्भ में 2 अक्टूबर 2014 से भारत सरकार ने स्वस्थ भारत मिशन शुरू किया, जिससे गांव देहात के लोगों में स्वच्छता का आदत विकास करे। इसके लिए भारत सरकार ने ये मिशन चलाया है ना। स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को बहुत सारे स्वच्छता का ध्यान देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो पीने का पानी, सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि हम पीने का पानी ला कहाँ से रहे हैं, कुआं से, चापाकल से, नदी से, कहाँ से ला रहे हैं। पानी जो है हमेशा ऐसे जगह से लाना चाहिए जिसके आसपास गंदगी जमा ना होता हो, गंदा पानी का ठहराव ना होता हो, है ना। और पानी जितनी गहराई से आता हो और ढका हुआ हो, तो जैसे चापाकल से ला रहे हैं तो चापाकल के आसपास पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, कचरा फेंका नहीं जाना चाहिए, ऐसे जगह से पानी लाना चाहिए। तालाब का पानी या नदी का पानी पीने के लिए नहीं लाना चाहिए।
1: अच्छा, इसमें नदी की यदि आपने बात कही है कि गांव क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में नदी के किनारे लोग चूहा बना करके पानी लाते हैं, तो क्या इसके कारण भी बीमारियां बढ़ने की संभावना होती है?
2: इसके कारण बीमारियां बढ़ने का अधिक संभावना होता है, क्योंकि नदी का चूहा का पानी जो है वो गहराई से नहीं आता है, जमीन की गहराई से नहीं आता है, वो नदी का ही पानी होता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा बालू हटा के करते हैं तो थोड़ा साफ दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में पीने लायक साफ नहीं होता है और सुरक्षित नहीं होता है। हम लोग पानी ले आते हैं, उसके बाद हम लोग पानी का रख रखाव का भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग को घर में पानी जो है थोड़ा सा ऊंचा जगह में रखना चाहिए, जिससे बच्चे हाथ ना लगाएं, और पानी को ढक कर रखना चाहिए। उसको पीने का पानी को निकालने के लिए भी लंबा डंडा वाला लोटा या टिसनी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि पानी में उंगली ना लगे, हाथ ना लगे। इसके साथ ही हम लोग को खाना बनाने का भी ध्यान देना चाहिए, साफ बर्तन के साथ साथ साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, सब्जी उब्जी भी जो लेकर आते हैं, उसको पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए, उसके बाद उसको साफ बर्तन में ही पकाना चाहिए, है ना। खाना भी हम लोग को गरम गरम खाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग को घर में जो है पानी का सही निकासी का भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग बर्तन घर के आसपास धोते हैं, तो बर्तन धोने से जो पानी का जमाव होता है, वहाँ पर बहुत तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, मक्खियाँ उत्पन्न होती है, जो हमारे खाने पीने के सामान तक पहुँच जाते हैं। इसके साथ ही घर में और घर के आसपास हम लोग को साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। जैसे घर के आसपास घास है, झाड़ियां हैं, तो उसको काट देना चाहिए। पानी कहीं जमा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं बर्तन धोते हैं, कुछ करते हैं, कोई गड्ढा बना के रखे हैं जिसमें पानी जमा होता हो, तो उसमें किरासन या फिनाइल डाल के देना चाहिए, जिससे उसमें एक पतला परत तैयार हो जाता है, जो पानी, गंदा पानी जो है हवा के संपर्क में नहीं पहुंचता है और उसमें कीड़े उत्पन्न नहीं होते हैं। तो उसका भी साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। हमेशा गड्ढा जो है ढका हुआ बनाना चाहिए। जितना हो सके हम लोग के घर के आसपास हम लोग को कूड़ा जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक का कोई टुकड़ा, कोई बर्तन का टुकड़ा कहीं किनारे पड़ा हुआ रहता है, कोना में पड़ा हुआ रहता है, तो उसमें पानी जमा, बरसात का पानी जमा हो जाता है। तो बरसात का पानी जमा होने से उसमें मच्छर उत्पन्न होते हैं, तो जिससे मलेरिया फैल सकता है। मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होते हैं, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, ये सब मच्छर जनित बीमारियां हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने आसपास कहीं टूटा फूटा सामान जिसमें पानी ठहरता हो ऐसा नहीं रखना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए।
1: अच्छा, इसके साथ ही और एक जानकारी दीजिए साथ में कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और उसका बचाव हम कैसे करें।
2: बरसात के समय में सर्दी जुखाम, मलेरिया, हैजा, डायरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया, ऐसी बीमारियां और खुजली, ऐसी बीमारियां होती है ना।
1: तो इससे हम बचाव कैसे करें।
2: इससे बचाव का तो यही तरीका है कि हम लोग अपने आसपास पानी का जमाव होने ना दें, जिससे मच्छर उत्पन्न ना हो, और जितना हो सके हम लोग गर्म पानी करके पिए। जैसे हम लोग पानी कुआं से लेकर आते हैं, तो कुआं अगर ढका हुआ नहीं है तो उसका पानी को हम लोग को गर्म करके इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे सफाई किट का इस्तेमाल करके हाथ अच्छे से धोना, खाने पीने से पहले हाथ अच्छे से धोना, नहाना धोना का विशेष ध्यान देना चाहिए। और घर का और घर के आसपास का सफाई अच्छे से करना चाहिए। जैसे घर के आसपास कूड़ा करकट जमा नहीं करना चाहिए, है ना। इस झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय में कीड़े मकोड़ों के साथ सांप बिच्छू का भी निकलने का संभावना रहता है, इसलिए जितना हो सके सफाई का ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाए रखना का कोशिश करना चाहिए।
1: अच्छा, इसमें और जानकारी दीजिए कि वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार खुले में शौच रोकने के लिए काम कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, मिशन के तहत, तो ये खुले में शौच का क्या दुष्परिणाम हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो क्या इससे बीमारियां फैलने की संभावना हो जाती है।
2: स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे विशेष इसी चीज का ध्यान दिया गया है कि खुले में शौच का आदत जो है वो बंद हो और शौचालय का निर्माण किया जाए, शौचालय का उपयोग करने का, अपने अंदर विकास, आदत का विकास किया जाए। इसके लिए सरकार ने सबको लो कॉस्ट शौचालय भी बनवा कर दिया है। इस क्या होता है, हम लोग जब बाहर शौच करने जाते हैं तो उस शौच पर मक्खियां बैठती है। ये मक्खियां बहुत दूर तक, मतलब मक्खियां एक घंटे में 400 किलोमीटर दूर तक उड़ सकती हैं। तो सोचिए कि ये कहीं आप बहुत दूर जंगल में भी गए हैं तो गांव से आप 400 किलोमीटर दूर नहीं जाते हैं, शौच के लिए 400 किलोमीटर दूर नहीं जाते हैं। गांव से बाहर तक जा सकते हैं, जंगल तक जा सकते हैं, लेकिन 400 किलोमीटर दूर तक तो आदमी नहीं जाता है। तो मक्खियां वहां इतना दूर तक जा सकती है, तो वो शौच लेकर वो
1: कहीं उड़ सकती है,
2: कहां तक नहीं जा सकती, मतलब घर में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। कहने का मतलब है घर में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। उसके बाद क्या होता है, बरसात का समय है तो ये शौच फैलता है, पानी के साथ बह के नदी में तालाब में चला जाता है। अगर कुआं में पानी का घुसने का जगह है तो कुआं में भी चला जाता है। कभी अगर शौच सूख गया है तो आंधी तूफान में हवा के साथ भी, धूल के साथ भी उड़कर चला जाता है, और जो ढका हुआ कुआं नहीं है उसमें भी पहुंच सकता है। तो इस तरह जो है वो धूल तालाब नदी इसमें भी मिल सकता है। तो इस तरह से बह करके वो कहीं बहुत दूर तक भी जा सकता है। तो हमारे खाने पीने के सामान में हवा के द्वारा या मक्खियों के द्वारा वो पहुंच सकता है। इसीलिए हम लोग को खुले में शौच नहीं करने का आदत को विकसित करना चाहिए, जिससे कि बीमारियां ना फैले। तो ऐसे हाथ को साफ रखना, जिससे कि खाने पीने का सामान गंदा ना हो जाए या मुंह तक किसी प्रकार का गंदगी ना चला जाए, इसीलिए। और भीगे कपड़ों में हमें देर तक नहीं रहना चाहिए, इससे सर्दी जुखाम जैसी आम बीमारियां होती हैं। और घर में हमेशा बरसात के समय में गर्म पानी करके रखना चाहिए, जिससे बच्चों को और बुजुर्गों को सर्दी खांसी होने का ज़्यादा संभावना या जल्दी संभावना होता है, इसीलिए गर्म पानी पिलाना चाहिए।
0: श्रोताओं, अभी हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता के संबंध में। जानकारी दे रही थी नांसी द्योगम और भेंटवार्ता कर रहे थे मैं सुरेश चंद्र स्वयं। इस भेंटवार्ता के बाद आइए सुनते हैं यह संदेश।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
0: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की अवधि बढ़ाने का संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के कारण देवघर और संताल परगना में कई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होने की वजह से यह निर्णय लिया जा सकता है। सरायकेला खरसावा में आदित्यपुर स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी हादसे के शिकार मृत श्रमिक मुरली पात्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। कंपनी प्रबंधन ने आश्रितों को 10,60,000 रुपए और ग्रुप इंश्योरेंस की पूरी राशि देने का निर्णय लिया गया है। लोहरदगा में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और एक युवा व्यवसायी की हत्या के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल लोहरदगा बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। चैम्बर ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गांडकीदा गांव में अज्ञात तत्वों द्वारा एक दंपति की हत्या कर दी गई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस दोषियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए डाल्टनगंज रेलवे कॉलोनी से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु DSP मृत्युंजय गोप के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में आरोपियों के पास से 2 किलोग्राम 690 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। गढ़वा जिले में औसत से कम बारिश होने के कारण कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान के बजाय मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की वैकल्पिक खेती करने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार अलनीनों के प्रभाव के चलते जिले में खरीफ सीजन की फसलें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: को स्वास्थ्य रही अपा इन क्षेत्र में ले रहे दबो सरकार स्वास्थ्य लगे तो ऐसे पूरा योजना को चलाए तन गया एन रियो कोई हो उनको आको एनीमिया ची कुपोषण रिया आको ऐसे शिकार होते ना को एन रिया जो रेट मिना इना ऐसे पूरा अत मिना कोई हो उनको और एन लिखा गया अब राजनीतिक क्षेत्र रे अब नेले रहतो राजनीतिक क्षेत्र रे अब कोई हो उनको इवन पूरा अत काको सेंतना तो निया को नेल केते गे अलिंगा उड़ू उते कोई हो उनको स्थिति जो का आको परसेंटेज जो का नो खराब पाए मिना
1: और अब इंदारन तो माने हो समाज रे अगर अब ले लिया तो कोई हो उनको ला मिना है ना माने कोवा हो उनको तुलना रे आको रेसियो जो मिना पूरे मिना तो ऑल पढ़ा रहे चीन वर्ष में पूरे तक कोई उनको आयरन था ना कोई इंकरिंग चिर गया
0: इया
1: और ओ चिलिके मने इनाव में ना अच्छी कोई उनको तस्सीय दिन रे ऐसे पूरे इटा पाकुमान को सेन होता ना
0: इया नेले तन गया वो ना इटा दिसुम को कोई सा टका नाला लिखा ते को सेन होता नहीं
1: है इन तारे तरह तरह के घटना को ले लेना होता ना तो निया भी आ चिलिके में उड़ या बन इसे
0: आयर तो अलिंग इन अलिंग जो का काजे सनांग उतने चे तोरंग चिना मेंते इनता को सेनो उतने हां चिकंडा चे आको सेनो तंती आको कारण इना बु चिरगले इनं बु अटकर दैय चे आको इंतर स्थिति तोरंग चिना चिलके मिना तो अलिंग उड़ उलिकाते कहीं ना कहीं ना अबु आदान के अबु हो समाज अबु हो हुदाय रे अबु अरे गरीबी एंते बेरोजगारी रिया जो ऐसो मरंग समस्या निया मिना गया एंदो अबु वा दुअर रे अबु कोई होन को नेलकन स्थिति को नेल नेल केते आको होबा दैव आलिं मतलब पूरा आको लो जगर तो कलिन जगर कनेन जो मिलो आइनो कोई होन तने तो समझाओ तन गे ची होबा दैव इन स्थिति को नेल केते गे आको निकट होरा को उड़ उकडा ची काके इटा दिसुम सेनोइन इन तारे बुगिलिकाते पैसा टाका नालाइन एनरो तो चिना छि अपना उवा दुवार बुगिलिकाइन
1: चलाओ दई
0: चलाओ दई तो इनका उड़ को तोरा उड़ बा के तो कोई हन को इनता सेनो तना को
1: हां
0: मेन तो इनता सेनो तन रे आको मिंडो निकाय को उड़ बाया छि का इन तारे अबु जदु सेनो बो इटा देसुम रे
1: हां
0: एन दो अबु आजो जिंदगी मिना
1: हां
0: इना ओडो बुगिलिका बो बेहतर बाई दई चेंडा छि इन तारे छ आको उड़ लिकाते इनता कंटिन्यू मिडो पार्टी हो बाबा मतलब जान तारे फैक्ट्री को रहे जान ये रियो पार्टी हो बनता
1: पार्टी को नाम है को
0: तो इन तारे मिडो कंटिन्यू मिडो पार्टी को नाम मिटी इतना तो मिडो इन रासा थियो इनता को सेन बाना अब उन तारे चिना हो बोतने ची इनका कंटिन्यू पार्टी का हो काको नाम है तने तोरा इना मनते इन पाको सेन होता और कुछ कुछ कारण दो ये हो बदेवा कुछ जो दलाल को तैबाना को ओकन को एटा तुसम निका माई तको इडिबा को आको ऐसो पूरा इनका जो का चकट जगर ये लिखा आको यो चकट बा केते जगर केते अब उदाहरण माई तको इन पाइटा दिसुम को इडिबा को तने पैसा टाका नाला लिखाते तो इना को मिडो इन कारण को तने इन कारण चलते गए आको पैसा टाका नाला लिखाते को सेनो
1: सेनो अंडो इना मिना अच्छी नन जैसे मान ली ना तो हतुर तो हगा को तैने दादा को बाऊ को इंगा को अपु को तैने को तो जुका लिखा इना ताइने छी जुकर का सेफ्टी या फिर सुरक्षित
0: सेफ्टी जो आको अबो हातुरे जो दादा तको दाई तको अबो मारा हो को बिना को एंगा अबो समान सबन के बिना को आको आप छी बुगिन होरा उदु सबन दिन के उदु बाबू को जाना है वो पार्टी तन रे मेता बुआ को चिका गनिया बुगिन एटकन पार्टी छी बुगिन पार्टी तन इन दिशा बुदे उदु तन को अबो नितार ताइना को
1: ताइना हां तो सारी के माने हातु देसु में ते अबो ऐसे सानी बो सेना उतना बो अंडो इंतारे मिसे मिसे नैनर को बंक हुआ इंतार अबुल ओ कौन घटना को हुआ इन्हें काको लेल बुए काको दिंग बुए तो इनकन केस को मिसे मिसे लेलना हुआ तो इन्हें मिसे दुख हुआ था लेकिन कुछ कुछ तो मने इनका सभी तो इनका तो का हुआ हुआ तार तो बुगिन तैयार बुता इन्हें बड़े पैसे टाको बुना रहे हैं मतलब कदी
0: या इन्हें गने चिल के भी मैंने किधर ची इटा दे सुम्रे ना पार्टी तो कुछ सेना उतना है तो इंतारा को स्थिति तोरंग चिलके भी ना बुगिन गया चे खराब गया तो खराब तो बनो हाँ तारक को दो बढ़िया के को पार्टी इतने चेरे जो ओकन हो इनक चिलके इन जगर कर लिखा गए ओकन हो को अपना उवा दुवर रिया दुकु को एगा आपु को आइए नेल केते अपना गरीबी को नेल केते सेना कने को इनकन को सारे रेना इनता बुगली कते को पार्टी इतने और इनतार पार्टी केते नाला नौकरी नाला केते इन पैसा ते अपना उवा दुवर को बुगी इतने एगा आपु को नेल को तने सब ना आगे नेले तन गिया को
1: और एन रहते नन अबु ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱫᱟᱨᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱥᱩᱢᱨᱮ ᱮᱯᱮᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱚᱭᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱤᱥᱩᱨ ᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱛ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱪᱮᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱟᱱ ᱩᱲᱩ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱚᱠᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱱᱯᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱠᱚ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱮᱰᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱤᱱᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚᱭᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟ ᱢᱤᱞᱚ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱤᱭᱳ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱭᱵᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱮ ᱠᱚᱥᱚᱞ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱦᱚᱲ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱱᱤᱱ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱭ ᱵᱩᱪᱤ ᱥᱩᱨᱩᱣᱟᱛᱤ ᱟᱥᱛᱟᱨ ᱛᱟᱫᱜᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱱᱚᱵᱟᱫ ᱜᱮ ᱠᱟᱦᱚ ᱵᱟᱱᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱠ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱮᱥᱩ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱰᱚ ᱰᱟᱜ ᱪᱮᱞᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱱᱤᱱ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱠ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱢᱟᱦᱟᱛᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣᱮᱱᱟ ᱱᱤᱱ ᱢᱟᱦᱟᱛᱛᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱡᱟᱱ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱱᱤᱱ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ
1: ᱟᱯᱱᱟ
0: ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱵᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱭᱟ ᱤᱧ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱝᱜᱩᱱ ᱛᱮᱱᱮ
1: ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱪᱟᱥ ᱥᱩᱨ ᱵᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱟᱵᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ
0: ᱪᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱥᱚᱞᱮᱱ ᱫᱟᱭ ᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱮᱱᱵᱟᱨᱢᱮᱱᱴ ᱟᱵᱚ
1: ᱢᱟᱱᱮ
0: ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱟᱱᱟᱥᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱜᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱟᱥᱲᱟ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱤᱱ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱛᱟᱭᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱫᱟᱹᱧ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱱᱟᱞᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱤᱱ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱡᱽᱵᱩᱛ ᱫᱟᱭ ᱵᱟᱵᱚ
1: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱮ ᱪᱟᱥ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱞᱟᱡ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱢᱤᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱱᱟᱢᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱤᱢᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱚᱛᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱡᱚᱢᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱮ
0: ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱠᱟ ᱚᱛᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱪᱮᱞ ᱠᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱯᱨᱟᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱞᱚᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱚ
1: ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ
0: ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱭᱩᱣᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱱᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱠᱚᱪᱟ ᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱞᱠᱟ ᱵᱚ ᱟᱠᱚ ᱪᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱤᱢᱤᱱ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱟ ᱠᱤ ᱟᱠᱚ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱮᱠ ᱯᱞᱟᱱ ᱵᱤ ᱟᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱰᱤᱯᱮᱱᱰ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱨᱴᱤᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱱᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱠᱟᱪᱮ ᱢᱩᱱᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱵᱩ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱤᱛᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱱᱩᱱᱟᱹᱢ ᱭᱟᱵᱚ ᱛᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱞᱟᱣᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱤᱥᱩ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱮᱱ ᱞᱚᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱨᱮ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱥᱩ ᱢᱟᱦᱟᱛᱛᱚ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱩᱞᱟᱹᱞ ᱫᱟᱭᱤ ᱠᱟᱵᱩᱞ ᱫᱟᱭᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮ ᱤᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱭᱟ ᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱫᱩᱱᱩ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱟᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩ ᱰᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱮᱞᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱭ ᱛᱤᱭᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱠᱚᱭᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱮᱞᱠᱮ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱪᱮᱞᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱯᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱴᱟᱭᱤᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱴᱷᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱯᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱥᱟᱜ ᱞᱚᱛᱮ ᱟᱨ ᱯᱟᱵᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱟᱞᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱤ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱟᱞᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱵᱩ ᱨᱮᱠᱮ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ लगभग 35 वर्ष या तो 12 और 115 अकिन उम्र तयोती दरकार अंड अकिन होमो लेकर बुगीते स्वस्थ खीन तयोती दरकार ताकि हन कि नल दाइके नेन हन अबेन 18 साल जो में रिके दिए जदि आए सनांग माची अंडोग ताइन थी एंदो अंडो बेन रिके दिए अंडो निया लगे ते सरकार पायतेयो चांडो उरे 4000 टका रे दिंगा नमो तो नेन लेका अबु तलम रेन हन को अबु समाज रेन हन को बुगी लेकाते दुलड़ते रिके को लगे ते असुल को लगे ते अंडो बुगी लेकाते नेल को लगे ते अबु निनाबु पाइटी नेन वेंस मिशन बादशाले योजना लेकाते इंदमार पूरे जानकारी लगे ते निना अबु डीसी ऑफिस कार्यालय सेन के नेत रेव पूरे ते पूरे जानकारी बु इट दिए इला आरपा मियन आंद दुरंग तो रचके लेन वा दुरंग तना किन पुलचंद सामान अंडो अकिने जुड़ी को

आकाशवाणी का ये चायपासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। वक्त हो चला है हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम नन्ही दुनिया का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

जय हिंद बच्चों। आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों आज शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस है। हर साल 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1940 में उन्हें लंदन की पेंटाविले जेल में फांसी दी गई थी। शहीद उधम सिंह भारत के एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल डायर को ही मारा था। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम शेर सिंह था। बच्चों उनके पिता का नाम टहल सिंह और माता का नाम नारायण कौर था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। अनाथ होने के बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में रखा गया, जहां उनका नाम उधम सिंह पड़ा। ठीक है, उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। डायर 1919 के कुख्यात जालियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर थे और इसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार थे। आप लोगों को तो पता है बच्चों कि 1919 में जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, उसी का बदला उन्होंने लिया था। जेल में कैद के दौरान उन्होंने अपनी सांप्रदायिक एकता

और देश प्रेम को दर्शाने के लिए राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का इस्तेमाल किया था। शहीद उधम सिंह का अदम्य साहस और देश को आज़ादी दिलाने के प्रयासों में किया गया बलिदान बच्चों भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब वापस को रुआ धरा रे हम बोले रुआ तब में अले परिवार से मतलब पूरे ये
3: ना मंगलोर को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हफ्तो तो घर आई में हमारे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: तुम बुरम सिंह तमसाय अनिता तमसाय भूरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनापाम तपाम वहा बेटा निका
6: बुम्बई कोडमी कोटमी कोड़ी बागेटी को पुलिस को लड़ाई चलावन बुरे गजा जाए तेरे काका बुन बुक को काको मेल मे
7: मुनि सुरन पे अपील बुगिन सेसन का बेटा उन का
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस खूबसूरत गीत के बाद बच्चों आइए जानकारी लेते हैं मिशन वात्सल्य के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, वह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना

के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवार को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3rd तला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। बच्चों, आज मुंशी प्रेमचंद जयंती भी है। हर वर्ष 31 जुलाई को महान हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन पर मनाई जाती है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। उन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और उनके पिता का नाम मुंशी अजय बराय था। बच्चों, बचपन आर्थिक तंगी में बीता। कम उम्र में माता पिता का साया उठ गया। संघर्ष करते हुए उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा पूरी की। उनकी रचनाओं में गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, कायाकल्प जैसी रचनाएं उन्होंने की। कहानी संग्रहों में मान सरोवर, जो 8 खंडों में संकलित है, जैसे पोष की रात, ईदगाह, कफन आदि, और पत्रिका संपादन में उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। उनकी रचनाओं में भारतीय किसानों और गरीबों, दलितों और महिलाओं के जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की व्यवहारिक खड़ी बोली उनकी शैली है। भाषा मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग से भाषा अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। आइए, आज मैं आप सबको उनकी एक रचना सुनाती हूँ, परिभाषा प्रेम की। प्रेम ही हर रिश्ते का आधार, दोहराती हूँ मैं बारंबार। जिसने पढ़ ली पाती प्रेम की, सपने उसके हो गए साकार। प्रेम तो ऐसा सागर है, जिस पर नहीं किसी का एकाधिकार। प्रेम न जाने जाति मजहब, प्रेम न जाने सरहद की दीवार। धरा ही स्वर्ग बन जाती है उसकी, जान लिया जिसने प्रेम का साथ। सकल जगत में एक ही धुन, सुर, संगम, संगीत प्रेम का। पाता प्रेम पल पल विस्तार, स्नेह प्रेम चंद। एक और सुनाती हूँ आप सबको। ईश्वर भी ना बदल पाए, कहते उन्हें विधि का विधान। राधा को चाहा, रुक्मणी को पाया, मीरा देती थी जिस पर जान। हरे केशव, हरे माधव, देवकी नंदन, कृष्णा कृष्णा, राज तिलक की थी तैयारी, वन गमन की आई बारी। हरे राघव, हरे रामा, रघुनंदन, श्री राम श्री राम। पांचाली का चिरहरण, जरा करके देखो मनन। 5 पति जिसके हुआ फिर भी लाज हरण। दशरथ की पुत्र वधु, जनक सुता प्यारी, वन वन डोली सीता, होता वक्त बलवान। हो निटाल सके न कोई, हो निर्धन चाहे धनवान। इंसान का क्या कहना, बच न सके भगवान। ईश्वर भी ना बदल पाए, कहते उसे विधि का विधान। स्नेह के दिल और कमल, ये है विधि का विधान। तो चलिए बच्चों, हमारे आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो प्रेमचंद की कविता सुनाना चाहते हैं। आइए, सुनाती हूँ।

0: मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची का छात्र हूँ। बचपन से ही हिंदी साहित्य मेरी बहुत ही पसंदीदा रुचियों में से एक रहा है, और हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद मेरे सबसे पसंदीदा लेखकों में से एक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की कई कालजयी रचनाओं को पढ़कर मैं बड़ा हुआ हूँ, और आज उनके जन्मोत्सव पर मैं अपनी एक कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। व्यथा लिखी बूढ़ी काकी की, थोरी का गोदान लिखा, उसकी कलम की रोशनाई ने हर एक बलिदान लिखा। बुझती हुई डिबरी में कहाँ उसने बस पात्र लिखे, जब भी लिखा प्रेमचंद ने क्रांति का ऐलान लिखा। जूते फटे रहे लेकिन कदम कहाँ थम पाते हैं, रचनाएं वही कालजयी जो सिर्फ सत्य बताते हैं। निर्भयता से संभ्रांतों की आंखों में आंख मिलाते हैं, रचनाकार ऐसे हो तभी प्रेमचंद कहलाते हैं। मान सरोवर में मोतियों की मालाएं गढ़ी हुई, छोटे से हामिद की बातें कितनों से ही बड़ी हुई। जो कफन उड़ाया करते हैं समाज के धब्बों को, वही समझ सकते हैं मुंशी प्रेमचंद के शब्दों को, वही समझ सकते हैं मुंशी प्रेमचंद के शब्दों को।
1: चलें, जिष्णु की कविता के साथ आज कविताओं का दौर चला है, तो और भी कविताएं सुनेंगे। आइए सुनते हैं।
2: नमस्ते, मेरा नाम अनन्या कुमारी है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।

0: सभी के समक्ष कवि हृदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी रचित प्रसिद्ध कविता दुनिया का इतिहास पुष्टा का सस्वर पाठ करने जा रहा हूँ। दुनिया का इतिहास पुष्टा, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा, शश्रत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, शश्रत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जबके मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, जबके मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।
1: इस कविता के साथ ही आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जो दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से

0: घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी। जेपीएससी भर्ती गड़बड़ी पर दिल्ली से रांची तक सियासी घमासान। भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। जेएमएम ने लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्य में बढ़ सकती है एसआईआर की अवधि। 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शीर्ष अदालत से मिली जमानत। हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। और राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेल विकास के लिए खेलो इंडिया योजना को भी विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की।
2: जब से इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है, लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें अनियमितता हो रही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये हम लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है उनसे कहेंगे कि दोहरा चरित्र न अपनाए। झारखंड के बच्चों के लिए जो 5 दिन से युवा बिना खाए पिए वो रोड पे उतरे हुए हैं, वो अपनी मांग मांग रहे हैं, तो आप उनकी भी चर्चा सदन में उठाएं, उनके बारे में भी आप कहें।
0: इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने तत्कालीन अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया है और सीआईडी को जांच सौंपती है। उन्होंने भाजपा पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: जब भाजपा का कार्यकाल था झारखंड में तो कितनी अनियमितताएं थी एजुकेशन को लेकर। हमारे मुख्यमंत्री जी आने के बाद से उसे धीरे धीरे वो दुरुस्त कर रहे हैं और उसी क्रम में जो उनके बनाए हुए सिस्टम थे, उनके लोग थे, उसी के बीच से इस तरह की अगर गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए तुरंत उन्होंने वहाँ जो चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन लिया है। तुरंत सीआईडी जांच बैठा दिया गया है।

0: ये भाजपा की पॉलिटिक्स है कि अपने गिरेबान में पहले झांके और फिर दूसरी जगह के लिए बात करें।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने लोकभवन में कुलपतियों, शिक्षाविदों और गणमान्य अतिथियों से संवाद करते हुए राज्य की जनता के प्रति आभार प्रकट किया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की समृद्ध संस्कृति और परिश्रमी लोगों के बीच कार्य करना उनके सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। हजारीबाग केंद्रीय कारा में आज आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मुर्गी पालन और सिलाई कटिंग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार की समर्पण नीति का उद्देश्य इन कैदियों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: जहां जुनून मिलेगा इतिहास से, वहां लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
3: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
2: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
3: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
2: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
3: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
5: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
6: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
5: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 5 अगस्त से शुरू हो रही दावा आपत्ति प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को पारदर्शी सत्यापन के निर्देश दिए हैं। देवघर और संताल परगना में श्रावणी मेला के कारण उन्होंने राज्य में SIR की अवधि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिसका प्रस्ताव 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
7: एनुमरेशन फेम में पूरा झारखंड इलेक्शन मिशनरी अपने समय का निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा कर लिया। वर्तमान में भी सावन का मासन का लेकर देवघर दुमका में थोड़ा सा आपका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हम लोग समय बढ़ाने के लिए मांग रखेंगे। वो अभी अनामलीस का भी डेटा आ जाती है, फिर उसी हिसाब से एक आंकड़ा हो जाती है कितना समय एक्सटेंशन करना है। इसे उसके बाद कमीशन के साथ में हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। मेरे हिसाब से एक्सटेंशन हो सकता है, कारण एक्सटेंशन भी आवश्यकता भी पड़ेगी।
1: निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से जुड़े घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोडरमा स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत राज्य का पहला ODF+ जिला

0: ने जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजिता हेम्ब्रम ने कोडरमा में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि जिले ने 71% लक्ष्य हासिल कर लिया है और अगस्त महीने तक शेष कार्य पूरे कर इसे मॉडल जिला घोषित किया जाएगा।
1: अभी इनका 71% है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि इस महीने 100% ये कर पाए। तो अभी जो हमारा 16th वित्त आयोग के जो राशि जो पंचायती राज के द्वारा दिया जाएगा, हम चाह रहे हैं कि दिसंबर 26 ये फेज 2 का अंतिम समय है, तो हम इसी चार महीने में जितनी भी छोटी छोटी कमी रह गई है उन सबको पूरा कर रहे हैं।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार संताल परगना और कोल्हान संभाग में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज दिन भर बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बौछारें पड़ी। गिरिडीह में आज 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट में 250 से अधिक बालक और बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है।
2: टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ, जिले के शहर के छोटे बच्चे जो लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का और एक्सपोजर का एक मौका मिलेगा। ये प्रतियोगिता नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने का एक बड़ा अच्छा अवसर होगा, आने वाले समय के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार होने का रास्ता मिलेगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी। जेपीएससी भर्ती गड़बड़ी पर दिल्ली से रांची तक सियासी घमासान, भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। जेएमएम ने लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्य में बढ़ सकती है एसआईआर की अवधि। 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शीर्ष अदालत से मिली जमानत, हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। और राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत डाडर मौजा एवं आसपास के काजू की खेती से जुड़े किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। उपायुक्त आलोक कुमार ने शनिवार को 95 एकड़ भूमि पर फैले काजू बगान का निरीक्षण किया और वार्षिक पैदावार का आकलन कर काजू प्रसंस्करण इकाई अधिष्ठापित करने की दिशा में पहल करने की बात कही।
2: पहले अगर मान लीजिए एक एकड़ में आप प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, तो हम लोग और किसानों को इंकरेज कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग पैरेलली ये भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो भी प्रपोजल है हम लोग बनवाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है, तो हम लोग वो प्रपोजल बना के विभाग को भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग एक पहल यहां पे कर पाए, यहां के लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा।
1: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन एवं बेहतर कार्य करने वाले जामताड़ा के 7 बीएलओ एवं 4 सुपरवाइजरों को एसडीएम अनंत कुमार ने कप एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। एसडीएम ने कहा कि
3: नौ जामताड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गणना चरण के दौरान जिन बीएलओ के द्वारा 100% डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया है और साथ में जो सुपरवाइजर जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है, बैलेंस परफॉर्मेंस है, उन सभी को एक मोटिवेशन के रूप में कप और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिया गया है ताकि इनको देख करके और भी बीएलओ मोटिवेट हों।
1: जिला विधि

0: सेवा प्राधिकार की पहल पर व्यवहार न्यायालय सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक एवं न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों के अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारियां उपस्थित पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को दी। इस क्रम में कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार ने कहा कि
1: जो कानून बनाया गया उसे हम पॉक्सो एक्ट के अंदर देखते हैं, वहीं दूसरा है बच्चों द्वारा अगर कोई अपराध किया गया हो या ऐसे बच्चे जो समाज में उपेक्षित हैं, उन बच्चों को रिहैबिलिटेट करने का, उन बच्चों के साथ समाज, सरकार, हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, हमारे कोर्ट्स कैसे बिहेव करेंगी उनको रेगुलेट करता है, वो है जेजेआई। जितने भी तरह के परेशानियां हैं, चाहे बच्चों के द्वारा किए गए अपराध को लेकर हो या बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध को लेकर, इन दोनों को सेंसिटाइज करने के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
0: जामताड़ा जिला के आम नागरिकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए सभी प्रखंड कार्यालय परिसरों में चरणबद्ध ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि
2: इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार नंबर, आधार और मोबाइल नंबर, सभी दस्तावेजों को लेकर के वो नजदीकी CSC या प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करेंगे। आवेदन करने के उपरांत को वो ऑनलाइन फी पेमेंट करके स्लॉट बुक करेंगे और स्लॉट बुक करने के बाद सारे दस्तावेजों के साथ यहाँ इस कैंप में टेस्ट के लिए आएंगे। यहाँ पे अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उनको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
0: जामताड़ा जिला के सभी मंदिरों एवं देव स्थलों में गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही पूजा आराधना करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
3: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित जिले में आजकल एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 हो चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता दोस्तों के साथ हूँ मैं संगीता, और मेरे हाथ में है आप सभी श्रोताओं के द्वारा लिखे हुए बहुत सारे फरमाइशी खत। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता गवांडकर और प्रिंस एकांश गवांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बदलापुर मुंबई से हमें खत लिखा है सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और टुक टुक गवांडकर ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा दलाई किला से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता है लक्ष्मण सोए, आयु सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनेमाए सोए। बड़ा बाम्बू गोपालपुर के संतोषी महतो और जय कुमार महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। इचलकरंजी महाराष्ट्र से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें भेजा है बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे ने। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ के देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुषार, प्रभा देवी तामोरिया की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। लच्छनपुर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जीवनलाल रजक, सरोजनी रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ के शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। भड़गांव बलौदा बाजार से खत लिखने वाले श्रोता हैं राम दुलार साहू और नीलिमा साहू। टाउनशिप सेक्टर 8 के भिलाई से हमें अपनी फरमाइश भेजी प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर और दीपक श्याम कुंवर ने। चायबाजा से मोहम्मद समीम अख्तर, इकबाल भाई, लीलू खान और महमूद आलम की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई के नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म हवस का ये गीत जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी ने, और बोल लिखे हैं सावन कुमार ने और धुन है उषा खन्ना की। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं महुल्डिया सोनवा झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा के गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान और नीक पानी प्रधान की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बड़ा निमड़ी चायबासा से इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार और सुमित कुमार। आमजोड़ा मालुका के शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप की फरमाइश भी फिल्म हवस के इसी गीत के लिए मिली। तुरी टोला चायबासा से अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजने वाले श्रोता है मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म हवस से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कई सितारे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो समय की सीमाओं को लांघकर अमर हो जाती है। आज 31 जुलाई का दिन संगीत प्रेमी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आज ही के दिन सुरों के जादूगर, सादगी की मिसाल और हम सब के चहेते मोहम्मद रफ़ी साहब हमें अलविदा कहकर हमेशा के लिए अनंत में विलीन हो गए। श्रोताओं, रफ़ी साहब सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, वे हर भावना की आवाज़ थे। जब दिल में बेइंतहा प्यार हो तो चौधरी का चांद याद आता है, जब दर्द हद से बढ़ जाए तो दिन ढल जाए, भाई रात न जाए सहारा बनता है, और जब देश में दिल में देशभक्ति का जज्बा हो तो कर चले हम फिदा जैसे गीत हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। और जब जिंदगी से बेपरवाही जतानी हो तो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया होठों पर अनायास ही आ जाता है। श्रोताओं, चाहे सम्मी कपूर का अल्हड़पन हो या फिर देवानंद का स्टाइल हो या अमिताभ बच्चन का एंगर, रफ़ी साहब की आवाज़ हर चेहरे पर ऐसे फिट बैठती थी जैसे ये गाना

से और हमारे सभी प्यारे श्रोताओं की ओर से महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्हीं की पुण्यतिथि पर सत सत नमन करते हुए हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और श्रद्धांजलि देते हुए आइए उनको याद करते हैं और सुनते हैं उन्हीं के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म अमर अकबर एंथनी से। और इस गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडावा ग्राम लोहारी से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से इसी गीत को सुनना चाहा है विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रमापुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आरएसपुरी ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर से इसी गीत को सुनना चाहा मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रीक्षित, शशिकांत, रिया रीत, स्वीटी सागर, अंशु रितिका, नीरज रिचा, चित्रंजन उमेश, सरोज रेखा, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी लोगों ने। कस्बा वराड़ा जिला अम्बाला से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत और गुरशब्द। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा के अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। गांधीग्राम से हमें खत लिखा है प्रवीण सोनी, जगदीश सोनी, टावर चौक गुमला से एसएम जावेद, सगुप्ता अंजुम और जेनिस चौहरी ने। गांव चौहल्दा बागपत के संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा के चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखा है हमें ये कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। शेरपुर कलाम गाजीपुर के अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी के द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छविंद्र कुमार वर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार के लोग। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेद कुमार दामोदर और बड़सिंगी बुलढाणा के अमोल मानकर, शोभताई मानकर, श्लोक और दीपाली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। ग्राम नवागांव मुढ़ही पार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं सोहन साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तेजेश्वर, टाकेश्वर कुसाल और तुलेश साहू। ग्राम बन बगेरा राजनांदगांव के योगेश सारवा, श्रीमती आशा शारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि शारवा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। इसी गीत को सुनना चाहा है बिलासपुर देवरी खुर्द से संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म अमर अकबर एंथनी से।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

फिल्म अमर अकबर एंथनी के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में फिल्म ताजमहल से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर, बोरखेड़ा विप्रमाल, जिला उज्जैन के विनोद मुणत, कुमारी नेहा जैन, दीपक मैक मुणत और चेतन नाहटा और परी मुणत की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से इसी गीत को सुनना चाहा है अकरम हुसैन, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अविया नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैख और चीना सैख ने। कोकिलवारा उड़ाई जिला मुजफ्फरपुर के मोहम्मद फैसल सैख और नुजत जहां नान और कांति निकेतन, राजनगर के कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। ग्राम अमलेश्वर से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। बलराम गेट कासगंज के एम असलम सैफी, जुबे निशा बेगम, अक्रम सैफी, जाहिद सैफी और आवाद खां की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। भाटापाड़ा से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुणेन्द्र लहरे। छोटा निमड़ी चायबासा के बाबू राम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। अलीका डबावली से खत लिखा बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी ने। शास्त्री नगर बीड शहर से कृष्ण सपकाल, आशा सपकाल की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। दुर्गाई सेरू से इसी गीत को सुनना चाहा चंदू कुलकर्णी और हेमलता ने। परवणी से सी आर कुलकर्णी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेक विरक और मीका विरक की फरमाइश भी इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है सरायकिला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरे, सुरामणि मुंडरे, हीरामणि मुंडरे, हेमांती मुंडरे, डोबरू मुंडरे, साजन मुंडरे, सिद्धेश्वर मुंडरे, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरू मुकेश, कुशल मुंडरे, जानम सिंह मुंडरे, सिद्धि बोस, सोना बाबू और FM शिवा मुंडरे ने। पाकुड़ झारखंड के उत्तम कुमार भगत, येशु और तासु ने भी इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश में भेजी है। मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह और ऋषभ सिंह। हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा के जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और अर्जुन धीमान ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। बक्सर बिहार के सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्ला अंसारी और आसमानाज अंसारी ने, और चमन पार्क दिल्ली से सोनम और आदिबा, सरीमपुर बक्सर से राज, SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। डबावली हरियाणा से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं JK बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया। मलोट कैंप पंजाब के सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, किशन, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म ताजमहल से।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है जमशेदपुर से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। अलगीडाट कोरबा छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फूलजी यादव और समस्त यादव परिवार की। ग्राम धुरा बांदा भाटापाड़ा से हमें खत लिखने वाले श्रोता है प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू की। भिलाई पुराने भिलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से हमें अपनी खत फरमाइश भेजी है नौसाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, सहनबाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोग ने। ग्राम हनेरा से मानताराम सिंह गुंडिया ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म ससुराल से, और इसी गीत को सुनना चाहा है बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहटी बरेली से विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। बागपत यूपी से एहसान अली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। फाजिलका पंजाब से हमें खत लिखने वाले श्रोता है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, सालिनी खेड़ा, अरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार के सभी लोग। कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाह यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रेश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम और इरफान मीना ने। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागड़ी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कुचाई तोड़ंगी दो से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है मुकेश महतो, विजय महतो, दिलीप महतो, सूरजमणि महतो, सुमन महतो और रविंद्र महतो। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। गांव चांदपुर पोटका से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, आयुष भगत, राजू, बसंत कुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से हमें खत लिखा सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद ने। मुसाबनी से कमल भगत, रूपाली भगत, सनी, सोनू और अर्णवराज की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म ससुराल से गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

कार्यक्रम के यहाँ आखिरी फरमाइशी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सूरज से, आवाज़ एक बार फिर से गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी की। और इस गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल मधुर, प्रशांत मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर ने। सिमधरम पार्क विरमगाम गुजरात से अजित प्रेमिला भाविस, सनी भावसार, हेतल कृष्णा और जैमिन भावसार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। अनारकली बाजार जगराव के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाफिया और जयपाल यादव ने भी इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजी है। चितलवाड़ी अकोला से इसी गीत को सुनना चाह अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले और समस्त इंगले परिवार के लोगों ने। अमलाटोला चायबासा से गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। छत्रपति संभाजी नगर से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है राजेश साबली पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। बोडसरा नैला के प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र के रजियार अब्राहम, उज्जैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोसेफ रूफट, अविनाश छत्रपाल, सिद्धार्थ गुंडा ने और हीरामन सेंडे और उनके साथियों की फरमाइश भी इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म सूरज से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

0: श्रोताओं, फिल्म सूरज के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा का। तो आइए इस कार्यक्रम के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं PTI भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट DM, उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी, आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप

0: सिंधिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवंबर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है PTI भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने, लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूँ, लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:16 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज का दिन बेहद खास है और ये दिन खास करके खास है हमारे बॉलीवुड के कलाकारों के लिए, और न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हमारे देश के लोगों के लिए भी ये दिन बहुत खास है, क्योंकि आज बॉलीवुड की एक महान अभिनेत्री का जन्मदिन है। ये इन ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 60 से 70 के दशक में अपनी एक मुस्कान से करोड़ों दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया, जिनकी साड़ी बांधने का स्टाइल फैशन ट्रेंड बन गया और जिनकी चुलबुली अदाओं का हर कोई कायल था। तो अब तक आप ये समझ ही गए होंगे श्रोताओं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आइए अब आपसे ज़्यादा पहेलियाँ ना बुझाते हुए हम आपको बता देते हैं कि आज जन्मदिन है हमारी अपनी मुमताज जी का। श्रोताओं, मुमताज जी का फिल्मी सफ़र किसी प्रेरणा से कम नहीं। बतौर बाल कलाकार सोने की चिड़िया से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली मुमताज जी ने स्टंट और बी ग्रेड कलाकारों से लेकर बी ग्रेड फिल्मों से लेकर ए लिस्ट एक्ट्रेस बनने तक के सफ़र में अपनी कड़ी मेहनत की और इस मुकाम को हासिल किया। जब उन्होंने राम और श्याम और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में काम किया तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने ये माना कि इस लड़की में कुछ तो खास बात है, और इसके बाद आई फिल्म खिलौना, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक मंझी हुई अदाकारा भी हैं। श्रोताओं, जब मुमताज जी पर्दे पर आती थी तब तब स्क्रीन जगमगा उठती थी। राजेश खन्ना जी के साथ इनकी जोड़ी तो बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफलतम जोड़ियों में से एक बनी। इनकी हिट फिल्मों में दो रास्ते, आपकी कसम, सच्चा झूठा, रोटी इनमें से एक है। धर्मेंद्र जी के साथ लोफर हो या फिर शम्मी कपूर जी के साथ आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे गानों पर भी आज भी हमारे कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। आज मुमताज जी हमारे बीच सिनेमा के उस स्वर्णिम युग की एक खूबसूरत याद बनकर मौजूद हैं। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और वो एक ऐसी स्पिरिट बनी जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आज हम आकाशवाणी चायबासा की ओर से और आप सभी श्रोताओं की ओर से मुमताज जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी मुस्कान यूं ही बनी रहे। मुमताज जी, आप हमेशा स्वस्थ रहें और मुस्कुराती रहें। वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आइए अब इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मुमताज जी के ही फिल्म का ये गीत, गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म आपकी कसम से, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मेरी पसंद पे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी भी मिली है। तो कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत हमें लिखा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और ची डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। ग्राम बठेना पाटन से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली, शिवम, चटौदा सारागांव से सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष्ण वर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। न्यू कॉलोनी टुंगरी
दसर फॉर्म रोड चायबासा से हमें खत लिखा रश्मिता राउत, मधुश्मिता राउत, प्रकाश जायसवाल, रीना जायसवाल और वैष्णवी कुमारी ने। मलिट पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें खत लिखा है रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया ने। पुणे से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है पंकज बाड़ोदे, आर्या प्रियंका, बीटी बाड़ोदे और चंद्रप्रभा बाड़ोदे। खेड़ियाघर प्रखंड मझारी के बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है कुचाई बिदरी गांव से केपी सोए, सरिता दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए। ग्राम सूडा बेड़ा से हमें खत लिखा है बासिंग सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार ने। चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंतराठाड़ी मधुबनी बिहार के सोभिकान झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक, सोनाक्षी, अर्चना, विवेक सज्जन और एस के सज्जन की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनवीत, मनविंदर पांधा, गोलू कागो और जी एस रामगढ़िया। आमखोंडरा रिंगाखार से राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम, चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से हमें खत लिखा मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद ने। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। किशनगंज बिहार से खत लिखने वाले श्रोता हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानो। बंसाई चायबासा के परमेश्वर कुमार, दयावंती देवी, नीलम कुमारी, अमृता कुमारी, रचना कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, मीना कुमारी, शिवा खंडायत, शिवम खंडायत और सोनाली खंडायत की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बड़ा बाम्बू जोडीहा के मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो ने भी हमें खत लिखा है। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश के योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म आपकी पसंद से गायक कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है।

नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।

0: जंगल जा है तो आऊ का कहा मना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
1: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हतो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
2: मुकुल बुरा मिसिंग काम सा है अनिता काम सा है भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है व्यापार में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
3: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम बुंबई कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में बुरुड़ी ने बागिया तोड़ के दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुड़न को यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
4: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिसा हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का
5: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
6: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है बड़ा बम्बो गांव सुपाई साई से। और खत लिखने वाले श्रोता हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा कुमारी, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी। ग्राम गेलिया लोहार से कोमल बेसरा, बसंती, अन्नू बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने भी हमें खत लिखा है। लछनपुर छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश भेजनी विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और धनज आरू साहू ने। दादरी गेट भिवानी के कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम पैजनिया, जिला जालौन उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और अयोध्या चंसौलिया की ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। मोपका भाटापाड़ा के भविंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम जामठी वरुण अमरावती महाराष्ट्र से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मुकेश दिनकर कासलेकर और विमल विशाखा कासलेकर। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म लोफर से ये गीत गायक कलाकार आशा भोसले के स्वर में। और इसी गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी। बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज वसेरे की फरमाइश भी प्राप्त हुई। रामभटम संजय मैदान रोड रायगढ़ से हमें खत लिखा रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी ने। खरसावा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और सोनवा गांव पोडाहाट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। लालपुर मारो से हमें खत लिखा कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश, विनय ध्रुव, निम्मी, पम्मी ध्रुव, रितेंद्र कुमार ध्रुव ने। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ के साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस कुमार साहू और प्रतीक कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। ग्राम पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सोरेन, सुहानी देवी, संजय सोरेन, पाथोर

बांकीरा, डोली बांकीरा और रघुनाथ चरहट की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म लोफर से।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो रास्ते से ये गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में। और इस गीत को सुनने के एक ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कोटड़ा बहादुर जिला मंदसौर से नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल और वीके डांगी, मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आनिया अनाया, नेहा सागर मुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्बू कुरैसी और सुधीर नूतन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम फ्रांसी से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और हासी शहर के राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। कालका से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं सुखचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। कोचाई ग्राम इचाहातु से हमें खत लिखा है गोलाराम लोवादा, लुदरी, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनी, बिन जना और लोवादा परिवार के सभी लोगों ने। ग्राम लोसोदिकी से फरमाइश भेजी है कोमल महतो, पेमी, गोविंद जीतू और साईमान ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बो से और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं उषा महतो, नायडू महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोद्रा, अर्जुन बोद्रा और रवि बोद्रा। गांधी चौक बाड में राजस्थान के बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष की फरमाइश भी हमें इस गीत के लिए प्राप्त हुई है। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत और खत लिखने वाले श्रोता है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। पिपरपारा पालचुआ मुंगेली से खत लिखने वाले श्रोता हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर। ऊपरकोट मोहल्ला चखुंडी बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, सहनबाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। बेरड़ी से इसी गीत को सुनना चाहा है हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार ने। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र के नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। भिलाई छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। बरकाकाना से अफजाल ताज, साहिल सुल्ताना, मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। सद्भावना रेडी श्रोता संघ PMCT बनारस UP के आजन कुमार सिंह, वंदना, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित, पुलकित की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म दो रास्ते से।

श्रोताओं, फिल्म दो रास्ते के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 24,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
2: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
4: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ مرکز نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام میں بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے، جس سے ملک کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام حاصل ہوگا اور سمندر کے کنارے کے وسیع تر امکانات کو استعمال کیا جا سکے گا۔ مرکزی کابینہ نے اگلے 5 برس کے لیے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پر امن مظاہرین کے خلاف بہیمانہ کارروائی کے سلسلے میں پاکستان کی نکتہ چینی کی ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں سمیتا ڈے نے جوڈو میں بھارت کے لیے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے مکے باز پریتی پوار، جیسمین لیموریا، اروندھتی چودھری اور انکش پانگھل اپنے اپنے متعلقہ مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا پی ایم ایس ایس وائی کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد آج نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس اسکیم کو 5070 کروڑ روپے کی کل مالیت کے ساتھ منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکیم 5000 میگاواٹ پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کا احاطہ کرتی ہے، جس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے ایسے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے جن کی 2 گھنٹے کی کم از کم ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت کل 10000 میگاواٹ پر آور ہوگی۔
1: سولر کیپیسٹی پر کیپیٹا کے حساب سے دیکھیں تو ورلڈ ہائیسٹ دیش میں لگی ہے۔ واٹر باڈیز ہیں، ڈیمس ہو، لیکس ہو، کینالس ہو، ان سب کا اپیوگ کر کے جو سولر پاور جنریشن کیپیسٹی کریٹ کرنا ہے اس کا اپروول لیا گیا ہے۔ آج 102 گیگاواٹ یعنی 1,00,000 میگاواٹ کی کیپیسٹی پوٹینشیل ہے بھارت میں۔ ٹوٹل 5,000 میگاواٹ فلوٹنگ سولر پی وی فوٹو وولٹیک کیپیسٹی بھارت میں کریٹ کی جائے گی۔ 5 سال کی اسکیم میں 1 کروڑ پر میگاواٹ کا اس کا سپورٹ دیا جائے گا۔ اسکیم میں پروجیکٹس ول بی سلیکٹڈ تھرو ٹیرف بیسڈ کمپیٹیٹو بیڈنگ۔ 10 ملین ٹنز آف CO2 ایمیشنز کو یہ پریونٹ کرے گا۔
0: مرکزی کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے، جس کے لیے 84,000 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس پر مالی برس 2030-31 تک عمل آوری ہوگی۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ اسکیم سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی پوری ویلیو چین میں مداخلتوں کے ایک جامع سیٹ کا احاطہ کرتی ہے۔
1: سمندر منتھن بھارت میں آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کا پروگرام ہے۔ 84,000 کروڑ روپیز کا پروگرام ہے۔ اس کے 2 کمپوننٹ ہیں بڑے۔ تو پہلا کمپوننٹ ہے آف شور سیزمک ڈیٹا ایکوزیشن، 28,000 کروڑ روپیز کا یہ پروگرام ہے۔ دوسرا کمپوننٹ ایکسلریٹڈ آف شور ایکسپلوریشن اسکیم، یہ 43,200 کروڑ روپیز کا پروگرام۔
0: مرکزی کابینہ نے پردھان منتری کسان سمان ندھی پی ایم کسان اسکیم کو 2026-27 سے 2030-31 تک جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ 5 سال کی مدت کے دوران اس اسکیم کے لیے 3.15 لاکھ کروڑ روپے کے مجموعی مالی اخراجات کی منظوری دی گئی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ منظوری حکومت کے اس عزم کی توثیق کرتی ہے کہ کسانوں کی خوشحالی قومی خوشحالی کی بنیادیں استوار کرتی ہے۔ مرکزی کابینہ نے کھیلو انڈیا اسکیم کو وسعت عطا کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ ساتھ ہی اس نے کھیلوں کے قومی فیڈریشنوں کے لیے تعاون میں بھی اضافہ کیا ہے، جس کے لیے 2026-27 سے 2030-31 تک کی مدت کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
1: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन की काबीना की जानिब से मंजूरी भारत के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने की जानिब काया पलट कर देने वाली एक जस्त की अलामत है और इससे समुद्र के किनारों की वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि सरमायाकारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महारत से भरपूर इंसानी असासे और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे के इश्तराक से समुद्र मंथन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जानिब पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे उनकी इक्तसादी हालत भी बेहतर होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम की वसत और खेलों के कौमी फेडरेशन के लिए ताउन में इजाफे से मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों को निखारने के ज्यादा मौके मैसर आएंगे। हुकूमत ने कहा है कि रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण वीबीजी रामजी स्कीम के तहत आज की तारीख तक किसी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। देही तरक्यात के महकमे के वजीर मुमलिकत कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को पूरे मुल्क के देही इलाकों में इस माह की पहली तारीख से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमल आवरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलात में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप सैकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान ये बिल पेश किया। ये बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्यवाही में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फे सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाजत देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवाद की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने फौरी अहमियत के हामिल मामले उठाए। ताहम अपोजिशन अराकीन ने अपने मुतालबात पर जोर देते हुए नारेबाजी और मुजाहरे शुरू कर दिए। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल इनोवेशन मिशन के बुनियादी सतह के अख्तराकारों के ग्रुप से बातचीत की और नुमाइश के दौरान उनकी जानिब से पेश किए गए इख्तराई मॉडल्स का मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि बुनियादी सतह की इख्तरात का समाज की जरूरतों से हम आहंग होना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहिमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मुआशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार दीगर को अंकित शर्मा के कत्ल का मुजरिम करार दिया था, जिन पर फसादात के दौरान एक हुजूम ने हमला किया था। बाद में उनकी लाश एक नाले में पाई गई थी। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद इंतखाबात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तौहीन आमेज अवामी रद्द अमल का इजहार करते हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन शहरियों के खिलाफ जारहाना ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में 40 से ज्यादा शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं।
3: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: तर्जुमा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसके वजीर दिफा ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दुश्मन करार दिया। तर्जुमा ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है क्योंकि बालाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से महानदी और उसकी मावन नदियों में तुगयानी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: ओडिशा के 15 जिले मुतासिर हैं, जहां गांवों, सड़कों और हजारों हेक्टेयर काश्त की जमीनों के सैलाबी पानी में डूब जाने से रोजमर्रा की जिंदगी शरीर मुतासिर हुई है। हीराकुंड बांध के 22 दरवाजे खोल दिए गए हैं जिनसे सैलाब के पानी का इखराज हो रहा है। हीराकुंड बांध में पानी की सतह 625 फीट से ज्यादा हो गई है। बांध में कसीर मकदार में पानी की आमद लगातार जारी है जिससे मजीद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इन हालात में महानदी के तास में शदीद सैलाब के खदशात बढ़ गए हैं। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कोइंझार जिलों का फिजाई दौरा करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। भद्रक में एहतियाती कदम के तौर पर सभी स्कूल बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: गुजरात में रेड अलर्ट के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे जनूबी और वस्ती खित्तों में रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ा है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि बारिश से मुतासिर जिलों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा और सूरत समेत रियासत के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता है। इस खेल में भारत ने पहली बार सोने का तमगा जीता है। स्मिता ने कनाडा की क्वेंच को खातिन के 48 किलोग्राम जुमरे में 2-1 से हराया। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पांघल अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गए हैं जिससे भारत के लिए कम अज कम चांदी के 2 तमगे यकीनी हो गए हैं। वहीं अंकुश पांघल ने आज हुए सेमीफाइनल मैच में कनाडा के जोशुआ उफरी को 5-0 से शिकस्त दी। इस तरह पांघल मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक 18 तमगे जीते हैं जिनमें सोने के 4, चांदी के 9 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दी है जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरांदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की ارشد شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है गजलों के कार्यक्रम महफिल का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं गज़लों के कार्यक्रम महफिल की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली गज़ल फनकार मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह के युगल स्वरों में।

ये गज़ल श्रोताओं आपने सुनी फनकार छाया गांगुली और उस्ताद मोइन खान के स्वर में। आइए अब कार्यक्रम की अगली गज़ल आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार जगजीत सिंह के स्वर में।

0: आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल गायक कलाकार स्वाति नाटेकर के स्वर में

गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म रोटी से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म सफर से, गायक कलाकार मुकेश के स्वर में।

आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। कार्यक्रम का ये अगला गीत, आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाजें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और मुकेश की।

फिल्म अलबेला के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
2: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional sessions judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. In Jammu and Kashmir, one non-local labourer was killed and another injured in a terrorist attack in the Kilam Devsar area of Kulgam district this evening. Speaking to Akashwani News, IGP Kashmir V.K. Birdi said one labourer died while the other is undergoing treatment at a local hospital after unidentified terrorists opened fire on the duo. The IGP said the area has been cordoned off and a search operation has been launched to trace the terrorists. Meanwhile, Lieutenant Governor Manoj Sinha has strongly condemned the attack and issued directions to the security forces to step up operations. Flood crisis has deepened in Odisha as the Mahanadi and its tributaries continue to swell following incessant rainfall in the upper catchment areas. 15 districts have been affected, with vast stretches of villages, roads and agricultural land remaining inundated. Authorities have stepped up rescue and relief operations amid warnings of further flooding in downstream districts. Indian judoka Asmita Day and Harsh Singh created history by winning judo gold medals for the first time in Commonwealth Games today. Asmita Day clinched country's first ever Commonwealth Games judo gold, defeating Canada's Heidi Quach 2-1 in the women's 48kg final. Following closely, Harsh Singh kept India's golden momentum alive. He clinched the men's 60kg title, defeating Australia's Joshua Cartes in the final. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Asmita Day and Harsh Singh on their gold medal victories. And that is the end of this news bulletin.
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में होंगे उपस्थित। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।